0: Day one of the Tekken World Tour Finals 2023. And what better place than the legendary Civic Theater? This historic venue sets the stage for an unforgettable show, where only one will emerge as the new champion.
1: First Tekken World Tour Finals on American soil. It is about to be amazing, and I hope you guys are ready for some good-ass Tekken. And if you've ever watched the TWT Finals, you know historically the LCQ is where the fire starts.
2: The key word to me is violence. This is, we are about to witness some beautiful chaos, you know what I'm saying?
0: As the last chance qualifiers begin, Arslan Ash steps in, still feeling the sting of last night's defeat. The last chance qualifiers offer players one final chance to grab the two remaining spots in the Tekken World Tour Finals. With top global and regional players already locked in, this is the last opportunity for competitors to fight for Tekken glory. Who will rise to the occasion? The crowd's energy is electric. Every match ignites excitement.
3: KO. We always say it's a bloodbath, but this time, this is the last one ever for Tekken 7.
4: Oh,
3: and
4: yeah.
3: There
4: time
3: are so many killers.
0: In a surprising turn, Joe Crush, the opponent from the night before, wins the final match of the LCQ.
5: But oh my goodness, your LCQ champion, Paragon Joe.
6: Congratulations to Joe Crush on another awesome victory.
0: The crowd cheers as Joe's victory cements his rapid rise, while Arslan watches closely.
7: I don't know if it was like destined to, you know, like I just was winning. Like yesterday we played a practice tournament against Arslan. My first match, hard match was against Arslan and I, you know, won that. So I was like, wait, what's going on here? You know what I'm saying? Like, so yeah, man, it's just, it feels crazy. Something's in the air. You know?
6: We thank you guys for staying up with us, watching from wherever in the world you're watching from. But we'll see you guys in the morning. Look forward to the violence and the chaos that is going to go down in these group stages. And we'll catch you guys tomorrow. Everybody be easy.
8: Yeah, Joe Crush qualified kar gaya. Aaj LCQ tha uske andar se. Tension nahi hai mujhe, lekin wo young player hai aur काफ़ी अच्छा खेलता है, उसने हराया था, लेकिन मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट होगा कि मेरे पूल में वो आया तो मैं उसे हरा सकता हूँ, लेकिन फिर भी थ्रेट तो है वो, और मैं चाहूँगा कि मेरे पूल में वो ना आए क्योंकि मैंने बाकी सबके खिलाफ तो तैयारी की हुई है बहुत अच्छी. तो देखते हैं, बट कांग्रेचुलेशंस टू जोकर फॉर क्वालिफाइंग.
0: Arslan Ash was always a risk taker, constantly searching for new challenges. He dared to dream beyond his city's borders. While others saw gaming as a dead end, Arslan saw it as a way to greatness. Even when no one believed in him, he believed in himself.
8: मुझे याद है एक दफा फिर ना मैं इमरान बैठे गेमो सेंटर के बाहर, तो मैं इमरान से कह रहा हूँ कि यार इमरान, मुझे लगता है कि ना मैं यहाँ के लिए बनाई नहीं हूँ. मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए बनाई नहीं हूँ. यहाँ का लेवल और मेरे लेवल में बहुत फ़र्क है. मैंने बाहर जाना है और मैं ना बाहर जाऊँगा और मैं जीतूँगा.
9: पर तब हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे होते कि कोई अपनी टिकट खरीद के दुबई भी चला जाए.
10: तो मैं इसकी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने कहा शायद इसने अहम ही बात कर दी है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके पास तो पैसे नहीं है, ये कैसे जाएगा.
0: He knew greatness wasn't defined by where you start. It's about how far you're willing to go.
8: हम जिस सेंटर में खेला करते थे, उस सेंटर वाले आदमी से मैंने कहा कि ना मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने बाहर जाना है और तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो भी आता है उसे मैं हराता हूँ, मैं जीतता हूँ, तुम मेरे पे पैसा लगाओ. कहता मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ करूँ. कहा चलो मैं तुम्हारा पासपोर्ट बना देता हूँ. तो 5,000 रुपया उसने लगाया, मेरा पासपोर्ट बनवाया, मैं उसके साथ ही गया, उसने पासपोर्ट बनवा के दिया. फिर एक बंदा था दानी भाई, उससे मैंने कहा कि दानी भाई जीतेंगे तो आधे पैसे आपके आधे पैसे मेरे, मुझे बाहर भेजो जैसे करके. कहता कि 20,000 की स्टिक मंगवा के दी, आर्केड स्टिक जिससे आप बाहर प्रोफेशनली खेल सकते हो. तो पाकिस्तान में वाहिद बंदा था, पहला वाहिद बंदा था, इसके पास स्टिक थी.
0: It wasn't just a joystick. It was Arslan's magic wand, through which he cast his gaming skills for the world to see.
8: टिकट मेरी दानी भाई निकल आई थी, खर्चा वगैरह घर वालों ने दिया मुझे. तो पहला टूर्नामेंट मैं गया ओमान में खेल. पहली दफ़ा ट्रैवल करा था जहाज में बैठा काफ़ी घबराया भी जब बोल रहा नीचे आ रहा है पहले पहले दफ़ा और ओमान में फिर मैं रुका जो दानी बे के दोस्त थे कुछ जहाँ पे आप देखा होगा बाहर जाते हो फैक्ट्री के लोग बैठे होते हैं उन्होंने हॉस्टल बुक किया होता कमरा वहाँ पे बैठे होते हैं साइडों पे वहाँ पे मैं ठहरा टूर्नामेंट खेलने गया वहाँ पे मैं जीत गया.
0: Arslan's first win came easily. The competition in Oman wasn't tough. And the prize was only a modest gaming console. But within that small victory, Arslan saw something much bigger. FVC Major 2018 in Malaysia. A tournament where he'd face legendary Korean and Japanese players he'd only admired from afar. This wasn't just an opportunity. It was his moment to prove he could compete with the world's best.
8: मैं टूर्नामेंट पे गया पहली दफ़ा कोरियंस को देखा जापनीज को देखा उल्सान को देखा सबको मैं हरा रहा था तो वहाँ पे जिंडिंग कोरियन टॉप प्लेयर है वो आया मैं इससे कहा मैं क्या मिस्सा खेलो एफ टी ना एफ टी खेला तो उल्टे से एक रैक्टर ले रहा मतलब इन्जॉय कर रहा है कि हार है जीत रहा कोई मसला नहीं है.
0: In Tekken, FT stands for first to 10, meaning the winner is the first to win 10 rounds to claim the match.
8: मैंने किसी को कहा यार ये लोग सीरियस नहीं खेलते कहते नहीं टूर्नामेंट में सीरियस खेलते मैं कहा पता नहीं टूर्नामेंट मिलता कि नहीं मिलता ये मुझे मैंने इसको हराना है सीरियस करेक्टर लेके तो उसने एडी लिया एडी का प्लेयर था उससे मैंने बहुत बुरा मारा वो लोग परेशान हो गए कि जंडिंग ने एडी लेके हार रही है कहते वे आर यू फ्रॉम मैं कहा पाकिस्तान तो मैं पे गूगल पर सर्च करना पड़ा पाकिस्तान है कहाँ पे मतलब सुना है पाकिस्तान में भी गेम खेलते हैं.
0: फॉर द फर्स्ट टाइम द टेकन वर्ल्ड हर्ड द नेम पाकिस्तान. And it was Arslan Ash who made it happen.
8: Hello, haan bas uthi hu main taiyari full hai aur dua karna mama se bhi kehna ke dua kare.
4: First and foremost, one of the greats, one of the goats, one of the best to ever do it. Please make some noise for Nee.
11: Boom! Group B is filled. Anakin, Rafe, Kokoma, and Al to fill.
4: Make some noise for Arslan Ash. The choices have been made, the groups have been filled, and you guys are about to see some good ass Tekken. And I know it's early, but make some noise!
0: Arslan Ash, ever the strategist, picked his pool wisely. No Nee or Atif Butt to face early on. The tension in the venue is intense as the round robin unfolds. Crowd's energy builds with each match. And Arslan knows his moment is approaching. But how did a young boy from Lahore learn to handle such pressure? To find that answer, we must turn back time. Malaysia, 2018.
8: अब मेरा मैच है मैंने कहा इसको तो मैं हरा लूँगा मैं स्टेज पे हूँ उल्सान वहाँ पे है मैं यहाँ पे हूँ वो अपनी एल ई डी पे मैं अपनी एल ई डी पर बैठा हूँ मैं खेल रहा हूँ मैं टांगे मेरी शेक करने लपड़े मैंने कहा मेरे साथ हो क्या रहा है मैं तो इस बंदे को हरा लूँगा पहले मैं ऐसे ऐसे करके टांगे बहुत ज़्यादा तेज थे इस कांप में लपड़ी मेरी टांगे और मैं नर्वस हो गया मैंने कहा यार ये क्या फीलिंग है क्यों और वो रिलैक्स है वही बंदा वही गेम एक दिन पहले उसको मैं जीतने नहीं दे रहा बहुत ही मैं नर्वस था उसने सेम गेम की कोई प्लान चेंज नहीं था लेकिन मैं हार गया तो फिर पता लगा कि यार इंटरनेशनल स्टेज पर खेलना और किसी कोरियन या प्रो के ख़िलाफ़ खेलना ये आपको एक्सपीरियंस से आता है फिर मेरा मैच आ गया नोबी से और नोबी के साथ भी सेम चीज़ हुआ और फिर मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं उससे भी हार गया ना इस तरह बिल्कुल लास्ट राउंड पर लास्ट पॉइंट पर हार तो मुझे पता लगा कि यार स्टेज की गेम और स्टेज का प्रेशर हैंडल करना और अपने आप को कंट्रोल करना नर्व्स को कंट्रोल करना भी ये अलग गेम है डजंट मैटर कि जितनी मर्ज़ी आप प्रैक्टिस करो जितने मर्ज़ी आप अच्छे हो जब तक आप स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाते उसका प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते यू आर नथिंग.
0: Arslan Arslan Ash, known for learning from his mistakes, has overcome early challenges. Yet, the heat is on in New Orleans as Olsen dominates Group A, securing a top eight spot in the finals. With Group B matches about to begin, all eyes turn to Arslan Ash to deliver. Arslan feels the weight of expectations. Every win counts, but the road ahead is long and tough.
3: Look at this Group B, man. We have the four-time EVIL champion, Arslan Ash, in this group.
6: We have to our next match, which is going to be a run back for the ages,
3: oh
6: MYK.
3: My goodness.
6: We got to see, you know, if Al is going to sit down and play against Arslan Ash, who's the player that he's worried about?
3: Let's find out.
12: So, in the European tournament, the most important player in the tournament is the player.
0: The bright lights shine down, and the crowd buzzes with excitement.
6: Pakistan, you already know, started playing with Tekken 6, best memory of Tekken 7, becoming a double EVO champion, best result in TWT 2023.
0: It was a high-stakes mirror match between Ao and Arslan Ash, both using Zafina and Kunimitsu, a character Arslan had owned into his secret weapon and good luck charm. Known for his mastery of female characters, choosing Kunimitsu seemed inevitable.
3: Stuff from Tekken 7.
6: Ninja battle. At EVO, it just felt like, again, just momentum control completely in Arslan Ash's favor. A lot of really, really just compact play, too.
3: Oh my goodness. Wow.
0: The pressure was building, and Arslan could feel it in every breath. But with a final blow, he claimed a victory in the first match. The crowd erupted, but beneath the cheers, this moment carried a deeper meaning.
6: Arslan Ash, for so many players on this tour, especially so many of the qualified...
0: In a male-dominated society like Pakistan, where heroes are often men, Arslan Ash broke the mold.
13: अपने वक्त में बड़ा फेमस हो गया था कि वो लड़कियों से खेलता है और उसका इवन लड़कों ने नाम रख दिया था कि अरसलान बच्चियों वाला
14: लव्स इस्तेमाल होता था बच्चियों वाला तो ये जो फीमेल्स करैक्टर खेलते थे ना मेल्स नहीं खेलते थे ये उनके लिए इस्तेमाल होता था
8: वो अजीब मेंटालिटी लोगों की थी तुम वो लोग बिस्ती फील करते थे क्या हम लड़कियों से हारे हैं
15: माशाल्लाह से पाकिस्तान में सबको अल्फा बनने की पड़ी रहती है तो यू नो अल्फा बॉयज हमेशा से मेल कैरेक्टर से खेलते हैं ठीक है तो वो ठीक है ना बॉयज को सूट भी करता है
8: और जो लड़कियों से खेलता था उस पे भी वो कहते थे तो बच्चे ना खेलने हैं मतलब समझ आ रही है आपको कि एक शेम होती थी क्योंकि और क्योंकि लोग उनसे खेलते नहीं थे लड़कियों से तो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं होती थी उनके खिलाफ मतलब एक चीज़ आप करोगे ही नहीं तो उसके खिलाफ प्रैक्टिस किस तरह करोगे आप तो ये वजह थी कि मैंने उनसे खेलता गया और फिर मैं पाकिस्तान में जीता भी उससे जूलिया से फिर नीना से लीली से
15: क्योंकि उसको पता था कि लड़कियाँ इस गेम के अंदर बहुत तेज हैं लड़कों की निस्बत
16: फिर उनके पास प्लस फ्रेम ज़्यादा होते हैं उनके पास डैमेज ज़्यादा होता है यानी कि उनको टेकन में मेल की निस्बत जो है ना एडवांटेज ज़्यादा होता है वो इसलिए इनसे खेलते हैं
17: आई फील दैट दैट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट इन हाउ ही perceives not just himself but you know the sort of environment that he was brought around his mother was really back there to support him and he really reveres that sort of empowerment that came from her
18: ha zafina ka maine bataya tha maine kaha is character se khelo ki wo jaise wo jump karti na ghoomti hai to wo bada acha mujhe laga na dekh rahi thi main isko khelte hue main kaha nahi ab ye naya character aaya to isse khelo
19: zafina ka maine pucha tha aap kyun khelte hain uske sath तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मा ने कहा था ये आप इसके साथ खेलो ज़फीना के साथ
17: I don't think that you know like you could probably ever come up with a character that's female and Arslan would not gravitate towards This is girls game not it's all skill
3: Arslan breaking rules so and it's real Arslan Ash, you know, ever since he picked up Zafina and then he moved over to Kunimitsu, he really started like mastering the character, finding the intricacy. And the Kokoma, he kind of just plays whoever's cheap, right? So let's find out what Kokoma feels about his performance in the CWT so far.
20: 좀 긴장은 솔직히 많이 되는 거.

0: 같아요. 왜냐면 마지막 철권 세븐의 이제 무대이기도 하고 당연하게 이제 이 자리에 밟았으니까 어떻게든 뭐 살아남을 수 있을까라는 걱정도 되고.
1: Zafina from Arslan and Fang from Arslan, now fully confident, dismantled Kakuma's defenses with precision, pushing himself closer to his ultimate goal. The crowd roared as Arslan won the match.
2: So clean,
3: so far undefeated in group stage play.
1: He shook off the pressure, his belief growing stronger with each step forward. In this final showdown, Arslan Ash isn't just chasing victory. He's determined to take the top spot, and he won't settle for less.
4: I think you made Zen me baat dal di gayi thi meri ammi ne is main kahunga ki first aana hamesha na mujhe raat ko padhai bhi karti thi kafi zyada ki first position lekar aani hai to wo mujhe badi trigger ki matlab jab chota hota hai bachcha uske aap zehen mein jo bhi cheez dal dete to wo is tarah se sochna padta to meri jo mentality thi thinking thi bhai pehle to bata bhi tha ki first aana hota kya hai first second third matlab aake hoga kya to wo mere jo andar thinking thi na ye wali तो वो डेवलप होना शुरू किया कि फर्स्ट आना है हमेशा स्कूल के अंदर तो मैं स्कूल में फर्स्ट आना शुरू कर दिया पहले मैं सेकंड आता एक दफ़ा सेकंड आया था तो मम्मी को पसंद नहीं आया शायद कहती नहीं एक दफ़ा फर्स्ट आना क्योंकि खुद भी अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आया करती थी तो वो भी क्या करती थी कि तुमने भी फर्स्ट आना
5: बस वो पेपर होने ना जब हमारी क्लास में तो खुशी होती थी कि मैडम ने कहा नाम लेना दीजा तो बड़ी खुशी होती थी कि खड़ा कर देना कि ये फर्स्ट आई है तो इसी तरह था कि बच्चे भी सार कामयाब हो तो माँ बाप तो खुशी होती है
4: तो इस तरह ही गेम में मुझे फिर फाइटिंग गेम में काफ़ी इंटरेस्ट आया क्योंकि उसमें फ़ाइट कर रहे हो इसमें जीत हो रही है किसी कोई हार रहा है तो वो चीज़ ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि यार जीतना है क्योंकि अगले को हराने का भी मज़ा आता था
1: Arslan Ash remains unstoppable in round robin. His momentum is undeniable. There's no turning back. His next big challenge loomed, Anakin from the USA.
2: It's Anakin representing Atlanta, Georgia.
1: Backed by the roaring support of the home crowd.
3: Representing his character on tour all year long.
1: Anakin fought bravely.
2: Big damage, and it's enough, Anakin! The first one today in this group stage to even give Arslan a loss.
1: But Arslan stayed calm, his focus unshaken. With sharp precision, Arslan broke through Anakin's defenses and claimed victory.
3: All victories in group stage for Arslan.
1: This win not only secured his top spot in the group, but also marked a historic moment. Arslan finishes the group stage on top.
3: As you know, he came into this event knowing that this is his last chance for Tekken 7 to be able to stamp put a stamp on this event in particular. It's eluded him in the past, and he showed you he is ready.
1: An achievement he had never reached before in this TWT Finals history. As Arslan Ash advances into the top 8 from the winner's side, one question lingers in his mind. Will his ultimate rival Ni make it too? The fierce rivalry that began at the 2018 OUG tournament in Dubai is now reaching its peak in New Orleans.
4: I think आपको अपनी जर्नी में एक ऐसा rival मिलता है जिसको आप हराना चाहते हो हर सूरत में और आपके लिए काफी in a way काफी helpful रहता है तक मंजिल तक पहुंचने में.
1: But defeating the very hero who inspired you is never easy.
4: 2018 दिसंबर में OUG की बात है टूर्नामेंट का नाम OUG तो मैं स्टेज पे हूँ अनाउंस हुआ नी वर्सेस अरसलान ऐश आ जाए तो मैं स्टेज पे गया तो सेम सीन होने लपड़ा मेरी टांगे रुके ही ना मैं ऐसे रुकूँ मेरी टांग ऐसे कर मैं मतलब इस तरह मतलब लिटरली इस तरह शेक करी थी कि मैं खुद नहीं बता सकता बहुत तेज़ी से बहुत ही अजीब फीलिंग थी वो वाली.
1: After struggling under pressure against Olsen and Nobi in Malaysia 2018, the thought of facing Ni seemed unrealistic. If he couldn't handle lesser-known pros, how could he take on the best? Desperate for one last chance, he pleaded with his first-ever sponsor, V-Slash, who was now on the verge of pulling out, just to get a ticket, relying solely on promises and prayers. But how could he possibly defeat the greatest of all time?
4: पर मैंने ना हिम्मत इकट्ठी की कि नर्वस नहीं होना जो भी है हार जाऊंगा लेकिन मैं नर्वस नहीं होना तो मैं बाहर गया और मैं जाके ना काइंड ऑफ मेडिटेशन कह लो या कुछ भी कह लो मैं आंखें बंद करके इस पर लाइक कि मैंने बस जो भी सोच रहा था कि अपनी ना एनर्जी कलेक्ट कर रहा था कि जितनी मैंने गेम आज तक खेली है ज़िंदगी के अंदर वो मैंने और अम्मी का भी सोच रहा था बहुत ज़्यादा कि वो प्रेशर था तब प्रेशर था मेरे पे बहुत ज़्यादा कि मैंने वो प्रेशर और जो सीए की जो फीस और सब कुछ मेरे जहन में आ रहा था कि मैंने उस सब चीज़ों को ना आज बदलना है मैंने उनको पे बैक करना है जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं दानी भाई जिसने भी जिसने वीज़ा की मदद की जिसने किसी भी तरह की मदद की मेरे और मैंने अपना नाम बनाना आज मेरे पास इसके बाद शायद मौका आए ना
1: But Arsalan defied fate. Against all odds, he stepped up and conquered the greatest. The underdog had risen. The impossible was now his reality.
6: Dubai 않은 선수였지만 굉장히 잘하는 사람이구나 그런 생각이 들었고 그런 플레이를 아마 그때까지 이제 보여주었던 사람이 없다 보니까 굉장히 이제 흥미로우면서도 어느 정도의 충격을 받았습니다.
4: 6 라운드 스트레이트 맞았기 때문에 오버 뉴스 बहुत 바이럴 기게 아슬란이 6 라운드 위고 마데 스트레이트 니 एक भी मैच नहीं जीता.
1: In the grand finals, Arsalan achieved the impossible. A fairy tale ending to an unimaginable journey.
6: 그 전에는 이제 좀 본 적이 없던 스타일이었어요. 왜냐면 공격과 방어의 밸런스가 너무 좋았기 때문에.
1: In one night, everything changed. The quiet underdog from Pakistan dethroned the undisputed king, catapulting himself into the spotlight.
4: Twitter खोला कोई हजार followers हो गए. बड़ी जा रहे हैं, बड़े लोग follow कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक player आया है, पाकिस्तान का भी कोई नाम है. YouTube पे लोग मुझे कर रहे हैं. पहली दफ़ा मैं YouTube पे वीडियोस आने लग पड़ी और मुझे पता नहीं famous लोग Markman जो अब Evo पे जिनका वो जो है director सारी के किसने को हराया है पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया पाकिस्तान से तो वो चीज़ को एडजस्ट करते करते तीन चार दिन लग गए मुझे फिर पाकिस्तान आया लोगों ने बड़ी वाह वाह की कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया ये वो तो अब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा तो मैं नहीं को हराया फिर इमरान की मुझे कॉल आई मुझे अभी भी याद है मैं एयरपोर्ट पर था तो कहता है इस्लाम तुम्हें याद है तुमने बात की थी पहले कि तुम हरा सकते हो नीको और मैंने कहा हाँ मैंने कहा था कहता है तुमने आज ना पूरा किया और मैं उस वक्त वाकई रोया था उसकी बात सुन के कि हाँ मैंने एकदम ख्वाब देखा था एक कि मैं बाहर जाऊँगा और तुम्हें भी यकीन नहीं किया था मेरे में तो लेकिन कहता कि तुम्हें यकीन था अपने आप पे तुमने किया है काम
1: नाउ विद द स्टेज सेट फॉर द अल्टीमेट शोडाउन दिस इज मोर देन जस्ट अ राइवलरी इट्स डेस्टिनी Arsalan Ash isn't only chasing a win. He's chasing a dream only he dared to believe in.
7: Look at this. This is the original Tekken 4 PlayStation. And Harada just signed it, one. And two, this is like the OG cases, bro. They're trying to get rid of physical media. So the fact that you have this, yeah. Is actually, this is like an instant collector's piece now.
8: और भाई टेंशन कम हुई
9: प्रेशर का बहुत टेंशन थी कसम से अब आगे जो भी होगा अच्छा होगा लेकिन चलो पूल तो क्लियर किया
1: As excitement and nerves soar, Arsalan waits to see who will move forward from Group C and D.
10: Is the next one.
11: But before we get there, we got a chance to talk to Atif about how he felt about this Tekken World Tour performance. Let's take a listen.
12: इस साल में जो काफ़ी ज़्यादा जो टूर्नामेंट खेल चुका हूँ मैं पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री में खेल चुका हूँ तो मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और
1: जो क्रश पुश्ड रेनिंग चैंपियन आतिफ बट टू द ब्रिंक
13: They're making some noise out there.
1: But Atif barely escaped defeat, keeping fans on edge. For the first time in a long time, Atif looked vulnerable. Against all odds, Atif Bhatt, the reigning champion, failed to secure his place in the top eight. Atif Bhatt narrowly escapes defeat against Joe Crush. Atif Bhatt's loss to Lohai shocked the arena, but the real drama unfolded in a nail-biting

0: tiebreaker. A match that would decide his future in the tournament. The atmosphere was tense, every move critical. Yet, in an unexpected twist, the strong contender fell short. Against all odds, Atif Butt failed to secure his place in the top eight.
1: To be very honest, I was happy. I didn't say that I was sad. A
2: pure gamer can never be a friend of anyone. In the game, he will compete with him.
1: Because he was the only player who could harass me. If he was in the top eight, in the grand final, I was happy. But as a friend, I was sad. I was feeling mixed if I talk about it.
0: Meanwhile, Arsalan's fierce rival Ni made it to the top eight. Though from the loser's bracket. Adding even more tension to their heated rivalry.
3: Looked like he's gonna be in there for tomorrow.
1: Or Ni loser mein tha to isse achhi baat ho hi kah sakti hai. Wo to haar jata to mere taraf se main to dua hi kar raha tha ki Ni haar jaye. Aur main to chahta sab bhi haar jaye. Ab main jeet jao.
0: Many dismissed Arsalan's early wins as luck, but he took their doubt as a challenge.
1: किसी ने मेरे ज़ेन में बात डाली थी कि तुम नी को जितना मर्जी हरा लो जब तक उसे तुम बिग स्टेज पे नहीं हराओगे। मैं कहा बिग स्टेज क्या है? क्या है बिग स्टेज? किसी टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल में, स्पेसिफिकली ईवो के ग्रैंड फाइनल में, तुम उसे हराओगे, तब तुम्हें लोग कहेंगे तुम सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो दुनिया के अंदर।
0: For a Pakistani like Arsalan Ash, the biggest fight often happens off stage. Getting a visa. After endless struggles and near misses, he arrived in Japan just in time for his match. He fought through the loser's bracket, taking down top players. In the grand finals, he defeated Filipino Tekken legend AK, resetting the bracket and claiming victory. A win that shocked the world. One question remained. Could he prove the world wrong by defeating Ni? At EVO USA, Arsalan answered that question with unmatched skill. Defeating Ni to claim an unprecedented double victory. In a single year, he rewrote history, establishing himself as the undisputed king of Tekken.
1: Defeating Ni, of statement वो मैंने वहाँ पे अपने लिए create की कि now I am the best in the world. Winning two Evos in a year, अभी तक किसी ने किया नहीं था life में.
0: His dominance silenced skeptics who had called his earlier successes a fluke.
4: People were still saying it was a fluke for some reason, but after the second time, maybe third time, I was just like, okay, this is a bit. Watch out for this guy.
5: So people calling it a fluke, that's just them not getting what they want from it. But me, I love to see how it develops and change up. So was it a fluke? I don't think so.
6: At first, I could see why people say maybe it's a fluke, because everyone loses. And you know, it was his first time being on the scene. So everyone expected, of course, Ni to win. But you know, once he's done it consistently, and not even just beating Ni, beating everyone else, it's like, it's not a fluke, and he's just really good. So that's just what it is.
1: I don't know how much tweets, but I was trending at that time. In the USA and Pakistan. In Pakistan, I was third number. In the USA, I was the first number. I was trending at that time. The USA is massive. So there, trending is a huge thing. And EVO, because I was trending in the USA, I was getting a lot of followers. And people from the world, wherever they are, tweets. फैला रहे हैं इस चीज़ को जितना फैला सकते हैं अब मैं ट्विटर से थोड़ा फेमिलियर होने पड़ा था तब तक और फिर मैंने सजदा किया वो ज़िंदगी में आज तक किसी ने नहीं किया था
7: paying respect. I love what I'm seeing there. Beautiful.
1: और वो वाली चीज़ बहुत वायरल गई उस चीज़ों को लोगों ने बहुत पसंद किया फिर लोगों ने सर्च करने लग पड़े पाकिस्तान के बारे में सर्च होने लग पड़ी इस्लाम के बारे में सर्च होने लग पड़ी सजदा क्यों किया गया अरसलान के बारे में सर्च होने लग पड़ी स्टोरीज लिखी गई आर्टिकल्स लपने लग पड़े काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने कवर करना शुरू कर दिया
8: Arsalan
1: फैमिली तो बहुत ही हैप्पी थी, मम्मा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी, जो मुझे मेरी चीज़ बहुत हैप्पी कर रही थी उस वक्त, ये मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हैं कि मैं जीता हूँ, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है। और सबसे अच्छी चीज़ तो इमोशनल भी है, काफ़ी इमोशनल है कि अभी हमने अपनी सिस्टर की शादी करनी थी, और इवन के मम्मा का जब इंटरव्यू करोगे वो भी आपको कहेंगी कि
8: ये जापान जब पहली दफ़ा जीता ना बड़ा टूर्नामेंट, तो उस वक्त वाकई हमें पैसों की भी ज़रूरत थी, ये बेटी की शादी भी थी तो ज़रूरत भी थी हमें, तो उस वक्त वाकई इतना इमोशनल हो गए थे कि हम रोने लगे। ये जब जीता है ना, सिर्फ मैं है एक दो पॉइंट से था कि ये जीत जाए, बस एक पॉइंट रह गया था कि या वो जीता या ये वो जीते, तो माशाल्लाह दुआ भी की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको कामयाब, यही वसीला है हमारा कि अल्लाह ताला इसको बना दे।
1: हाँ, हमारे पास पैसे भी नहीं थे तो और मैं जो 2 लाख था, 2 लाख से सोलह शादी होती है और लग भी चुका था 2 लाख, तो पैसे उसके बाद बहुत आम सी चीज़ें थी अंबर के पास, मतलब आम से ज्वेलरी, आम सा पर्स, आम से कपड़े, सारा कुछ आम सा। तो अब शादी किस तरह करना है, तो शादी के लिए उधार लेना पड़ना था, तो उधार दे कोई नहीं रहा था खानदान में,
8: तो बाहर कितने लोगों से पैसे मांगने के हमें मिले, लेकिन फिर मैंने कहा अल्लाह ताला ये जा रहा है ना तो इसको हमारा वसीला बना दो।
1: लोग जिनसे उधार लेने जा रहे थे कि कैसे उतारेंगे मम्मा उधार, बेटा भी कुछ नहीं करता इनका और हम उधार दे दे तो फंस जाएंगे, तो कोई उधार देने को तैयार नहीं था।
8: तब ये जीते जब तो बस रोने लग गए थे कि खुशी से कि अल्लाह बेशक तो करीब हो के सुनता, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी शहर अलग से करीब हो, तो वाकई इस तरह सुना फिर, तो फिर हम रोने लग गए, तो जाके मैं सही दिन में गिर गई थी कि अल्लाह ने इतना करीब हो किसे, वो मेरा मुझे पहली दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस वाकई अल्लाह ने सुना था।
1: और यही चीज़ काफ़ी अच्छी हुई मेरे लिए और मम्मा के लिए और अंबर के लिए कि मैं कर सका, मैं जरिया बन सका अपनी इस बहन की शादी करने का।
0: Arslan Ash's journey is a story of heart, determination, and unstoppable willpower. From humble beginnings, he rose to become the undefeated champion of Tekken, breaking every limit. But now, the weight of the world rests on his shoulders. He's just one title away from securing his legacy as the greatest Tekken 7 player of all time, if he wins the TWT Finals.
9: Arslan, big day. What are your thoughts?
10: बस प्रेशर में रहने कोशिश नहीं कर रहा ना, नॉर्मल जितना रह सके उतना वो है कि उस तरह अच्छी गेम में, बाकी जो रहा अलग होंगे। हाँ मैं रेडी, हाँ मैं खुद तो रेडी, नींद पूरी है, थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है कि आपकी नींद पूरी है तो वो तो पूरी है।
11: कल परफॉर्म तो अच्छा किया, काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, अभी आज का मैं लोहा इससे वो काफ़ी अच्छा किया तो वो है, उसके बाद उल्सा सारे कोरियन ही आए हैं, 6 तो कोरियन है, एक जापानीज है, उसके एक पाकिस्तानी, देखते हैं क्या होता है।
9: पाकिस्तानी है बाप यो खाली इस बार,
11: हमेशा ऐसे ही था, एक पाकिस्तानी होता लेकिन वो जीत जाता।
1: एक रात पहले मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि नी ने मुझे एक दफ़ा एडवाइस की थी, मैंने पूछा कि तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी रहती है प्लेयर से खेलने से पहले, वो कहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि मैं प्लेयर की गेम वॉच नहीं करता, उनका स्टाइल नहीं देखता, मैं बस करैक्टर को देखता हूँ उनके। मैंने पूछा ऐसा क्यों है, कहता है क्योंकि जब लोग गेम इन रियल टाइम अपनी गेम चेंज कर लेते हैं तो आप सोच के कुछ हो जाते, होता कुछ हो रहा है, तो मुझे नी की बात काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैंने लैब नहीं करना, प्लेयर्स को देखना नहीं है, मैं करैक्टर्स को लैब कर लूँगा, अगले दिन मेरा मैच हो रहा है लोहाई से, लोहाई के करैक्टर्स देख लेता हूँ, उनके करैक्टर्स के मूव्स रिमाइंड कर लेता हूँ हर चीज़, लेकिन हाँ मैं स्पेसिफिकली लोहाई को स्टडी नहीं करूँगा, शाह होता है उन्हें गेम प्ले ही चेंज कर लिया सारी की सारी।
12: भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है?
13: ये हैंड वॉल, आप ठंडे हाथों से गेम नहीं खेल सकते, लाइक अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो आप कम्फर्टेबली रहते हो, आपसे दुबते नहीं है बेटा, तो हाथ का वार्म होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मत ही रहने बोलता मैं बोल लूँगा।
14: Hi, this is Arslan Ash. I want to say thanks to Tekken 7. This game gave me everything, respect, money, fame. It means a lot to me. And I just want to say thanks again. I'm here because of Tekken 7.
15: To be honest, I want Arsene to take it. But Lohi has also been playing out of his mind. So it's between them two. And they're playing in the second match. So I don't know, man. I don't know.
0: The crowd buzzes with electric energy as Arsalan Ash faces Lohi in a high-stakes battle. The tension is thick, and every move matters.
16: One of these two players will meet him there later on today, but which one will it be? Deal with this? Come from behind?
17: Oh, that is game number one for Lohi.
18: Let's go, Lohi, let's go! Let's go, Lohi, let's go!
0: Lohi takes the first round, leaving everyone on the edge of their seats.
1: बहुत टफ चला गया था लोहाई वाला मैच पूरा का पूरा टॉप 80 इतना टफ था पर लोहाई का मैच पहला राउंड वो जीत गया तो आतिफ ने मुझे कहा था कि तुम ये ना लो नॉकटिस मैं नॉकटिस खेल रहा था और मैंने खुद भी कहा था मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ना लूँ मैं कुनी मिर्च से ले लेता हूँ क्योंकि मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा तो आतिफ वाज लाइक हाँ तुम उसके साथ खेलो कुनी मिर्च से और उसकी गलतियाँ देखो
0: In the second round, Arsalan counters with precise attacks, breaking Lohi's defense. The crowd erupts as he claims the round.
5: Arsalan looked good in that last game, and knee comes up on
16: the stage. Oh my God!
5: Oh, I almost spit my water out, bro. You can't.
0: Knee, coaching Lohi from the sidelines, knows that defeating Arsalan will clear his own path to the throne.
5: I did not. Oh my God, this is crazy, bro. Do y'all not understand? This is crazy.
0: Arsalan lands a perfect combo, sealing the victory in a thrilling finish. The tension isn't just in the arena, it pulses through Lahore, where every move grips the hearts of fans.
1: Four days after the flight, so Pranav, do I get
19: that? Who
1: will you play with? Now, Kunimitsu and Nokris and Zafina. नहीं ज़फ़ीना का काफ़ी लोगों को पता लग गया लेकिन मैं नॉकटिस
19: और बताओ इतना वीक भी हो गई
1: हाँ नर्फ भी होता पता है आपको तो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाकी आपको कहाँ साथ है और देखते हैं कि आप
19: और मानो भी साथ
1: मानो भी वैसे तो जीत रहे तो मानो ने जिताना है मानो ने मानो आपने जिताना ठीक यही जिताएगी मेटे का
0: Women have always played key roles in Arsalan's life, from his mother to the iconic female Tekken characters. Now, Arsalan welcomes two more important women, his wife and newborn daughter. Could they be his lucky charm?
1: Yes, I believe that because I was married after marriage. And before marriage, I had a lot of jeeps to listen to, which I didn't believe in. I think the world is, so you should listen to every person. Some people believe that शादी के बाद में आप उस तरह से नहीं खेल पाएंगे इवन एक करेक्टर है गायल तो वो जब जीतता है ना वो बोलता है कि तुम जाओ और शादी कर लो मतलब गो एंड हैव बेबीज इस तरह करके बोलता है जब शादी कर ली जिम्मेदारियां आ गई बेबी आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते अब आप गए अब शादी वाले अब पेरेंट बन चुके हो घर बैठो आप बच्चे पालो जाके अब तुम तो चैम्पियन तो कहीं कभी नहीं बनने वाले लेकिन आप अभी देखें रिसेंट वर्ल्ड के अंदर आप लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं मेसी रोनाल्डो उनके बच्चे हैं लेकिन स्टिल दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड तो ऐसा कुछ नहीं है ये स्टिग्मा है बिल्कुल कि ऐसा अगर हो गया शादी हो गई तो आप जीत नहीं सकते लेकिन मैं शादी के बाद दो चैम्पियनशिप भी वो फिर जीता और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी और बेटी रहमत होती है तो मेरी बेटी काफ़ी मुबारक रहेगी
0: Arsalan Ash challenges outdated beliefs. While the drama escalates as Nee enters the harsh losers bracket to face Rangchu.
16: There you go.
17: But what if you like the legend himself, the Brian player himself? Make some noise if you would like Nee to take the set.
16: All right, here we go. Already blocking. Big one set. Staying alive to fight another round. Is this the shift that he needed? Is this the momentum that he needed?
17: Oh!
16: What's gonna happen?
17: Oh, he blocked it. I can't believe it!
16: Oh,
17: my God.
16: What happened there? All right, guys, here we go. Final game between these two. Give it up for them.
5: Yo, make some noise for these guys, bro. The Tekken is going so high right now. Let's be careful. It has to be careful.
0: In a shocking twist, Rang Chu eliminates Ni in loser's top eight, sending shockwaves through the arena.
16: Is moving on, and Ni, unfortunately, eliminated at seventh place here at TWT.
0: Ni's chance slips away for the final time. Will Arslan seize the opportunity and make it to the finals?
5: Remember, this is Tekken 7. We're talking about Ni. Make some noise as he is eliminated from the final Tekken 7 Tekken World Tour tournament.
0: Ni's elimination shakes the community. But for Arslan, it brings a sigh of relief. Was he truly ready to face the legend? Or did fate spare him this time?
1: मैं भी घबरा रहा था क्योंकि क्या सीन है कि अब जब आप अपने ओपोनेंट से काफ़ी दफ़ा खेल लेते हो तो उसको आप अपनी चीज़ें बता देते हो काफ़ी ज़्यादा अपना गेम प्लान भी शो कर देते हो मतलब ये तो नी टू टॉप क्लास ले रहा है यानी कि मेरे से हमेशा हारता ही जाएगा और वो जिस तरह क्रेजी है वो अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो वो हरा कर ही रहता है उस चीज़ को
0: जस्ट एज द रोड सीम्स टू क्लियर अ फैमिलियर चैलेंज अपीयर्स Ulsan, the player who defeated Arslan in the 2022 TWT Finals, now stands in his way to glory. The stage is set. The tension is unbearable. Can Arslan overcome his past and reclaim his crown? Or will history repeat itself? Hearts race. Breaths are held. And the atmosphere is electric. Arslan feels the weight of the moment.
16: He's got the bomb. Trying to steal round one. Well, she is definitely out here to steal some hearts. Can she do it right now? Ulsan, I talked about this throughout. He has a sliver.
5: Went for backswing blow again. Arslan says no. Just a small dash forward in the
1: down. Unke Ulsan wala match, I think main zindagi mein kabhi itna tough match nahi khela life mein jitna Ulsan aur mera match tha. Winners final.
16: Both of them work. Final round here, one apiece.
5: Catching the sidestep on top of it. Goes for the spin, not gonna work out. 1-2-2.
16: He's definitely brought some of this stuff that he's been studying and labbing. Oh, and another big block against on the down three. He's gonna have to watch out. He wins. He wins.
5: Ulsan asking the crowd for more. This is a race to three, and Ulsan is asking for more. 14 seconds left on the clock.
16: Arslan has access to range drive now. Oh, he's gonna get it. Then the follow-up, the big sweep. I can't believe he's...
1: मतलब वो मैच ऐसा था कि अगर मैं हार जाता मैच तो मैं इतना डिमोटिवेट हो जाता था क्योंकि उस पॉइंट पर हारकर आप हार अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो तो वो मैच जीतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था
5: Pakistan flag in the crowd. I saw two of those bad boys.
20: I'm just gonna take a page from Steve. Good ass Tekken.
21: Good
20: ass Tekken.
21: Good.
20: One more. I'm gonna be real, man. I just want to reset.
21: Two more. Arthur.
16: I love Arthur. Oh my God. Here we go.
0: The match is intense, with every move increasing the tension.
16: In the winner's side grand final. Arthur fighting Gary.
0: In a show of pure skill and determination, Arslan defeats Ulsan, securing his place in the grand finals.
5: Achev comes out. Oh my God.
16: I can't believe the sequence is
22: working.
16: I'm not saying a thing, but look at that. Arslan standing strong, moving
5: close. He's close.
16: Look, he's emotional right now.
5: He's right there, bro.
16: He's so close.
1: उसके बाद बैक से जाके मैं literally लो रहा था कि मैं किस तरह जीता हूँ. वाकई मुझसे वो मेरे मोशंस आप देखोगे कि मैं बहुत ज़ोर से मैंने वो किया था जीत के और आतिफ भी आया था और आई वाज लाइक सिटिंग देयर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स और अपना हेड डाउन किया हुआ था और वो बहुत इंटेंस मोमेंट था मेरे लिए उतना इंटेंस मैच मैंने नहीं खेला
0: नाउ द स्टेक्स आर इवन हायर एज Ulsan प्रिपेयर्स टू फेस CBM द विनर ऑफ दिस थ्रिलिंग मैच will meet Arslan Ash in the finals of Tekken World Tour 2023, the last Tekken 7 tournament.
16: To three here, CBM and Ulsan. If he does, oh, no, what happened? I can't believe that was moves in. Shadow he has to be careful. Oh, he got him! He got him! And just like that, CBN secures a spot in our grand finals, and Ulsan out of the tournament. Oh my God!

0: Hello.
1: वालेकुम
0: सलाम।
1: हाँ मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। शुक्र अल्लाह का, मैंने क्या समझा, अल्लाह तआला को कामयाब करेगा, परेशान है।

0: टैक।
1: ओए क्या हुआ बे, ऐसा क्यों देख रहे? स्टार्टिंग में साइबर कैफे जाते थे तो लिखते थे कि क्रेजी डांस, बहुत ज्यादा फैसिनेट करता था मेरे को कि लाइक पीपल आर जस्ट लाइक फ्लाइंग लाइक यू नो इन द एयर, दे आर लाइक ट्विस्टिंग एंड टर्निंग एंड लैंडिंग ऑन देयर फीट। वीडियो के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, मैंने सब डॉक्यूमेंट्री में बोला ये चीज, वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस किया।
2: हां वीडियो में ही देखता था वो, वीडियो में देख देख के ही किया है सब।
1: वो रिसर्च किया मैंने बहुत ऐसा कि कहां से आता है, लाइक क्या टाइप के, लाइक यू नो क्या एनवायरमेंट क्या रहता है, बैटल क्या होती है। और मैं बहुत प्रैक्टिस करता था ब्रो, लिटरली मैं दिन रात एक करता था
2: प्रैक्टिस। कॉलेज जाता नहीं था, कहां जाता, घर से बैग लेके जाता, कॉलेज जाता ही नहीं है
1: ब्रो। मैं एक एक माले पे चढ़ के बैक फ्लिप मार देता था, लिटरली। शी इज नेवर सीन मी डांसिंग, ओनली टाइम दैट शी सॉ मी डांसिंग वाज 2019। The most prestigious B-boy, B-girl stage on the planet. You know the flight to see. That was the first time when ever any Indian stepped on the world finals. मेरे लिए भी बहुत अलग प्रेशर था कि भाई मेरी मम्मी देख रही है, हाँ इतने सारे लोग
2: हैं। सब लोग बोलते थे ना अभी मतलब फ्लैग मशीन आ रहेगा अभी, तो मैं आजू बाजू में सब बैठ, मैं मेरा बेटा है, बोले आपका बेटा है, मैं बोली हाँ मेरा बेटा है, बोले ये जो है ना इधर का स्टार तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे बेटे की वजह से ये सब हो रहा है।
1: मेरे को लगता है कि वो गिफ्टेड था कि वो ब्रेकिंग मेरे को मिला, और एक्चुअली मैं ऐसा मीडियम बन गया कि और उसको अलग लेवल पे लेके यार अपने कंट्री में।

ग्लिप म्यूजिक कम करो जैसे ग्लिप है वो डिफाइन करता है स्मूथ स्लिपरी मूव्स तो उसमें तीन चार मूव्स हैं तो लाइक पहले मैं उसमें नमस्ते करती हूँ जब इंटरनेशनल जाती हूँ नमस्ते एंड दिस पूरा ये चिल्ला लो जैसे मैं स्लिपरी बताया तो मैं ना खुद धक्का देके और घूमना ऐसा कुछ करके देन दीज मूवमेंट्स ये सब जो मेरे वो दिखाता है लाइक ये सब चीज़ें हो गई मुझे यही बताता कि आप हर चीज़ हंसोगे क्योंकि नाम इन्होंने दिया ही चिढ़ा देते मुझे बहुत ज़्यादा हाँ सो हाँ दीज थिंग्स ऑल्सो जो मैं करती हूँ बैटल में मैं अपने आप को मानती हूँ कि दो पर्सन है मेरे अंदर एक सिमरन है और एक ग्लिब है तो ग्लिब के दो मतलब है अगर सिमरन का देखा जाए तो बहुत टॉकेटिव पर्सन जो कि मैं जनरली हूँ और अगर ग्लिप का देखा जाए तो वो मेरे मूव्स डिफाइन करता है स्लिपरी स्लीक बहुत स्मूथ

0: Ochoa goes through the fans.
1: Here you go, Bobby.
2: तेरे अंदर वो इतना हंगर था कि मुझे जीतना है जीतना है और इस साल जीतना है तो इंजरी तो कुछ नहीं करना है 2023 से आप समझ सकते हो कि मेरी लाइफ चेंज हुई है रेड बुल से क्योंकि मेरे पास एक टैग लग गया कि रेड बुल DC1 विनर है यार ये
3: रेड बुल जीतना था कि इंटरनेशनल जाना था तो रेड बुल ही एक ऑप्शन था अगर वो जीतेंगे तो इंटरनेशनल जा सकते हो ना

0: पहले तो जब देखा मैंने तो मेरे को पता ही नहीं था ये ब्रेकिंग है, क्योंकि हम लोग तो मतलब स्टंट काउंट करते हैं, एज स्टंट काउंट करते थे वो टाइम पे, वो एरा में जिसको आता था ब्रेकिंग उसका इज्जत करते थे लोग एरिया वाले। इज्जत मतलब अगर वो कोई बर्थडे में जा रहा है तो उसके लिए चेयर्स आ रहे, कोल्ड ड्रिंक्स आ रहा, केक आ रहा, सब ऑटोमेटिक चल के आ रहा है। तो मैं बोला मेरे को भी चाहिए इज्जत भाई, मतलब समझेगा। फिर मैं नेक्स्ट डे जाके उन लोग अप्रोच किया कि मेरे को भी करने का, तो वो लोग ने मार के भगा दिया, नहीं सिखाएंगे बोले। एक सेलिब्रिटी टाइप ऐसा घूम रहा हो, ऐसा कोई रैंडम आगे बोलेगा मेरे को सिखाएगा क्या एक्टिंग, नहीं हो सकता ना, तो ऐसा भगा दिया मार के। फिर मैं उन लोगों को 2 महीना फॉलो किया दूर से, ऐसा 100 मीटर से ऐसा देख रहता था क्या क्या कर रहे, फिर अपने साइड जाके प्रैक्टिस करता था। एक टाइम पे 150-200 बी बॉय एक एरिया में, और अभी कोई है ही नहीं क्योंकि वो एरिया थोड़ा ऐसा था, डेडली था, तो सब लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, लोगों को जॉब करना था, कुछ लोग जेल में थे, कुछ लोग भाग रहे थे पुलिस से। तो गनी एग्जांपल, शफी, वसीम भाई, लोग सब लोग सेलिब्रिटी थे हम लोग के लिए। मतलब अगर वो लोग हम लोग के प्रैक्टिस प्लेस पे आ गए तो कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, चाहे 3 घंटा 4 घंटा सिर्फ देखेंगे सब। तो बस उन लोग के वजह से ही हम लोग को इतना हिप हॉप मालूम पड़ा।
1: मैं उसको बोला कि तूने एक चीज़ बहुत अच्छी बोला रे, मतलब कि वसीम भाई ये लोग बाकी लोग हमारे लिए सेलिब्रिटीज थे, अब भी मैं दूध लेके आया इसके लिए इसके घर पे।
0: टाइम बदलता है भाई,
2: फर्स्ट नॉलेज उसके बाद में दूसरा कुछ।
1: थोड़ा मजाक मस्ती है, मैं थोड़ी खींच देते हैं मेरी, क्योंकि एज भी हो रही है मेरी। अगर मुझे कुछ नहीं होता है करने से बोले भाई बस कर दो, हो गया। मेरा नाम वसीम है और मैं रॉकफिश से रिप्रेजेंट करता हूँ, और मेरी उम्र है 43 ईयर्स ओल्ड, और मैं वन ऑफ द फर्स्ट बी बॉय में से एक इंडिया में आता हूँ। प्रैक्टिस के लिए हम लोग बहुत दिक्कत होती थी, मतलब जगह नहीं मिल रही बिल्कुल भी।
3: यहाँ पे हम लोगों ने अपना फ्लोर बनाया था, हम लोगों ने खुद के पैसे से ये चीज़ बनवाई थी।
1: पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा फिशर एरिया है। प्रैक्टिस करके घर पे जाते थे, हम लोग की बॉडी से जो स्मेल आती थी फिश की, हर कोई गालियाँ सुनता था घर पे। 2011-12 बहुत अच्छा टाइम था, वो टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग की लड़ाइयाँ होती थी आर्टिस्ट लोग से, बी बॉस लोग से, बैटल्स के अंदर हम लोग का झगड़ा हो जाता था।
4: नहीं नहीं नहीं भाई, ये सब नहीं कर सकते भाई, ये सब नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे हिप हॉप के वजह से भाई, हिप हॉप हम लोग को ये सब नहीं सिखाता।
5: हो जाता है भाई, सीन रियल हो जाता है, लाइक यू नो बैटल थोड़ा इंटेंस हो जाता है कि यार।
1: एटीट्यूड क्या होता है, सामने वाला इतना डर जाए कि अपनी चीजें भूल जाए, एक एटीट्यूड होता है। नहीं, बाकी मैं ही हूँ खाली यहाँ पे।

0: reason you got the mass shaking like what?
1: कपड़ों से तो बहुत वो है इसको रोज जाना
2: क्योंकि हमारा ब्रेकिंग है फैशन के बारे में मम्मी मैंने मम्मी का शादी की ड्रेस को पहना तो मम्मी कितनी खुश होकर देखती रहती है उसको पूरे दिन जितना ब्रेकिंग को नहीं देखती उतना इन सब चीजों को देखती
1: शादी की बड़ी
2: तो मैं जैसे बता रही हूँ ना मम्मी आज 1 लाख लोग देख ली 1 लाख लोगों ने देख ली क्योंकि इनके लिए 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है 1 लाख लोगों ने वीडियो देखी फिर मैं बोलूँ मम्मी 1 मिलियन हो इतना इतना चला गया उतना चला गया तो मम्मी बहुत खुश होती थी सबसे ज्यादा जो मम्मी ने फेस किया है वो यही कि मेरे को मम्मी को फैमिली से पूरे आसपास के लोगों से बहुत सुनने को मिला है मेरे बारे में ये आपको पक्का आपका नाम डुबोएगी कहीं चल जाएगी घर छोड़ देगी
1: मैंने तो बैठना ही छोड़ दिया फिर लोगों को
2: मम्मी रोती थी मेरी बैठ के क्योंकि मम्मी मुझसे तो लड़ नहीं सकती क्योंकि मैं बता देती मम्मी कुछ भी गलत नहीं कर रही और मम्मी रोती थी कि मैं क्या करूं मैं सुन नहीं सकती अपने बच्चों के लिए इतना गंदा ये वो
1: ज्यादा लड़कियां तो करती नहीं लड़के ज्यादा वो है तो सुनने को बहुत मिलता था वो तो लेकिन मैंने सुना सबकी
2: जो लोकल बैटल होती थी उसमें साइफर में ज्यादा लोग होते नहीं थे 4-5 लोग खड़े होते थे तो मम्मी बोलती थी कि 10 लोगों के बीच में नाच के आ गई और पैसा इतना खर्च करके आ गई तो तू बड़ी बड़ी बैटल
1: छोटी छोटी बैटल सब अटेंड करती थी
3: This with the GG rap karu H451 gang mera needy Friday se freaky FRIENDS mein main Phoebe let me be be habibi
4: there were a lot of jams on small scale people used to like you know cypher a lot people used to like exchange a lot and it was very raw So breaking के बहुत सारे layers हैं. There's footwork, there's top rock, there's power moves, there is freeze. These are the core things जिसमें बाकी सारी चीज़ fit in होती है.

0: काफी मुझे ऐसा फील हुआ कि कंपटीशन था मेरा और मेरे को काफी भारी मूव करने पड़े।
1: खुद अपना कैरेक्टर ढूंढ रहे हो, फिर पावर मूव्स अनलॉक करने में सालों लग जाते हैं। जितना आप सीखते जाओगे, हार्ड पे जाओगे, उतना आपको इंजरीज के चांसेस है। कोई मैट नहीं वैट नहीं है, फ्लोर पे कर दिया, गिर गए, गर्दन पे लग गई, शोल्डर डिसलोकेट हो गया, कुछ ना कुछ नहीं इंजरी हो गई।
2: तो बेसिकली पहला मेरा लोअर बैक गया था, फिर उसके बाद शोल्डर टूटा था, फिर मेरा लिगामेंट गया, फिर अभी रिसेंटली वापस कॉलर बोन टूटा है। जहाँ पे प्रैक्टिस प्लेस मिल जाता वहाँ कर लेते। अभी नेहरू स्टेशन मिला, अगर कोई स्टूडियो ऑफर करेगा उधर भी जाके कर लेंगे, है कि नहीं? अपने को स्टूडियो मिलेगा, अपन स्टूडियो चल देंगे।

0: चीज अगर मैं सिमिलरली अगर करता था दूसरे कंट्री में 100% में ओलंपियन रहता था बिकॉज़ आई एम द बेस्ट बी बॉय इन इंडिया नो कैप
1: ऑन द वे लेट्स गो
2: हम लोग यूजुअली ऐसा ड्रीम करते हैं कि लाइक इंटरनेशनल लाइक यू नो वर्ल्ड में एंटर करना है हम लोग को देखना है वो एक्सपीरियंस करना है कि और लोग कैसे डांस करते हैं लोग तो हम लोग से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो लोग हाईएस्ट ऑफ हाई लेवल में कम्पीट करते
3: हम चले गए बाहरों में
4: मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि मेरे को एरिया में इज्जत मिले बहुत कुछ मिला है कपड़े पहनने का ढंग पासपोर्ट भर रहा है पैसा कमाना समझ में आ रहा है लोगों से बातचीत कैसे करना है वो ऐसा बहुत सारा चीज मिला मतलब जो भी अभी आज है सब ब्रेकिंग नहीं दिया
5: माझ्यावरती झळणारे विरोधक अपोजिट डजन या रॅपिंगच्या क्षेत्रात या वागाचं वजन
6: The Indian scene is just growing and it's stronger than some of the countries I've been to
5: जंदे तो काना खाली ऑटोग्राफ मी देत नाही भाषण रॅप सीन मध्ये चालतं
7: I thought that the scene was a pretty similar level to the UK.
6: They just need a little bit like of guidance, maybe some ability to travel, and they could really do some damage.

0: Flying Machine is very explosive when he breaks, but he takes his time between. The pauses are always clear.
1: Tornado is very real. दिखता है उनके emotions, दिखते हैं उनके face पे कि वो कितना सब कुछ करके वहाँ पर पहुँचे हैं और वो बहुत real लगता है.
2: मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ. अगर मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं अगर जॉब भी ढूंढूंगा तो मेरे को ऐसे कुछ भी मिलेगा, डिलीवरी का, वॉचमैन का, यही मिल सकता है, उसके ऊपर नहीं मिलेगा. ठीक है, बट वो 15 साल में मैंने खुद को इतना डेवलप किया ना कि मैं इंडिया को कुछ 15 कंट्री रिप्रेजेंट कर चुका हूँ.
3: इतिहास बन गया है, थर्ड प्लेस.
2: मैं ऑल ओवर इंडिया के सारा स्टेट में सिखा चुका हूँ. जो स्टार्ट करेगा उसके ऊपर है, डिपेंड इसके ऊपर करता है कि उसको क्या करना है.
4: पूरा लाइफस्टाइल है ये बेसिकली, और वो स्ट्रीट एम्पावर्ड है. आई डोंट थिंक कि हाई क्लास और लाइक यू नो पीपल कैन ऑल्सो, आई मीन दे कैन डू इट 100%, दे कैन नॉट लिव इट. You know, they lack something inside.
1: जो अभी जो हमारा ब्रेकिंग है, अब जो यंग जनरेशन है उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है. 10 साल बाद हम लोग ही ओजीज बन जाएंगे, हम लोग ही उनके लिए हिस्ट्री होंगे. जिनको मैं देखती आ रही थी, मैंने उनके बराबर पहुंची और फिर उनके आगे निकली, तो मैं अपने आप को मानती हूँ ऊपर. मैं चाहती हूँ और बिगर, एटलीस्ट उनके अंदर हंगर होगी इसको हराना यार, ताकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा जागे, मुझे किसने हराया अगले साल मैं उसको हराऊंगी. Barbie is like my great competition, क्योंकि हम लोग 4 साल से finals में मिल रहे हैं हमेशा.
5: मुझे बारबी अच्छी लगती है, मतलब वो जिस तरह डांस करती है, जिस तरह वो मूव करती है, जिस तरह वो फ्लिप्स वगैरह मारती है, तो बहुत अच्छी लगती है. उनका काफ़ी चीज़ें हैं वो अच्छी लगती है. ऊपर से वो मुंबई से है, तो मुझे मुंबई बहुत पसंद है, मुझे मुंबई जाना है. तो अगर मैं जाऊंगी तो उनसे वहाँ पर जरूर मिलूंगी.
1: अभी तो बारहवीं घर जाके रहे, उसके बाद बना चाहूंगा. नहीं, बारहवीं के घर जाके रहे.
0: Glib is like, I don't need to run, I can walk. You can see the difference with her and Barbie. Barbie's like very powerful and very fresh and new.
6: This is BC One India. The stakes are high here. But sometimes you just need to take a deep breath and just relax and just be in the moment.
4: Bro, this is my peace. Like, you know, where I'm at the most peace. You know, this was the first Red Bull BC One India trophy, 2015. I started off watching Red Bull BC One, right? So वो time पे I was like, अगर ये इंडिया में होएगा कभी भी तो मैं ही विनर होगा. Like I manifested it and this is my reality. Like an average kid from Yogeshwari East to somebody.
1: Flying Machine मेरे लिए एक चैंपियन है.
7: 12 के 12 महीने फॉर्म में रहता है.
8: उसका ट्रेनिंग, उसका सिस्टम बहुत अलग है.

0: अभी का मेरे को क्या है यार, मुझे लगता है कि हाँ मैं सुबह हो भी टाइम पर कभी मिलो।
1: अरे तो सोना
0: दिन क्या मैं सुबह अकेले खेला है, अभी मैं बस नींद में हूँ काफी ज्यादा। कल इंशाल्लाह सुबह आ जाऊंगा, अभी कल रात तक आ जाऊंगा। अब की रात में फिर कहीं बाहर चले जाएंगे तो मैं नहीं कर रहा, मैं वैसे अभी तो भी सो रहा हूँ।
2: Giving up comforts for just a few more hours of practice, Arslan pushed himself beyond limits. Yet, despite his determination, something always stopped him at the final hurdle.
3: First top 8 at a TWT final. He's got the spot.
4: मैं जो दो इवो जीत चुका था और मैंने सोचा कि यार ये भी जीत जाऊंगा, इजी है जिससे पहले जीत। तो इंसान गलतियां करते रहते हैं, हम थोड़ा सा गुरूर में आ गया था, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं जीत जाऊंगा, जो कि मैं फिर मुंह के बल गिरा, मैं हार गया।
5: When you become a very big thing, people are likely to find loopholes in your game.
6: Practice में थोड़ी सी इसने कुताही की।
4: आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, जबकि अब मुझे मैं रियलाइज करता हूँ कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है अपने टाइटल को मेंटेन करने के लिए।
7: पता नहीं, ये टेंशन भी आ जाता है कि मैंने जीतना, लेकिन नहीं हो पाता उससे।
8: असल में ज़रूरी नहीं होता कि एक इंसान हर दफ़ा जीतता रहे।
9: अरसलान काफ़ी इमोशनल भी होता है, कहता कि यार तुम्हारे पास टेकन वर्ल्ड टूर का टाइटल है, मेरे पास ईवो का टाइटल है।
10: TWT finals has always eluded him.
11: The Tekken World Tour follows a different sort of format, so Arslan had difficulty understanding how that would work.
12: 이상하게 이제 파이널에 왔을 때 뭔가 굉장히 어려워하는 느낌이 이제 들었어요. 왜냐면 그때 플레이도 뭔가 아슬란이 뭐 평소에 하던 그런 느낌이 아니고.
4: 근데 이 दफा मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं जीतने के लिए, और मैं इसलिए ज्यादा एक्साइटेड भी हूं क्योंकि लास्ट टूर्नामेंट है पूरे टेकन का। अगर मैं टूर्नामेंट जीत गया तो मैं हिस्ट्री बना लूंगा दुनिया के अंदर।
3: He is the greatest of all time without a doubt. Nobody has as many EVO titles as this man right here and he's done it again.
4: क्या कह रहा है अभी?
13: पास शर्ट्स रह गई हैं और पासपोर्ट रह गया आपका। ठंड हो रही वहाँ पे?
4: हाँ वहाँ पे तो मेरा ख्याल है वहाँ पे और न्यू ऑरलियंस में, इसका मैं देखा था तो दिन में 15 से 12 था टेम्परेचर वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी। बस मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, तो बस जल्दी जल्दी करो। मम्मा कैसे गए? मम्मा नीचे
13: नीचे।
4: और आनिया कहाँ पे? नीचे मम्मा पास है।
13: आनिया सोई और स्टिक आपकी?
4: स्टिक मेरी गाड़ी में, गाड़ी में।
13: ठीक है।
4: दुआ करना।
13: हाँ
4: मैं बैग में रहता हूँ, उसके ऊपर जा रहा हूँ फिर मैं। ठीक है, हाँ चलो दुआ करना। 3 घंटे बाद फ्लाइट है। ठीक है, और सही है बीबी? हाँ चलो निकल रहा हूँ मैं, गाड़ी खड़ी है। चलो ठीक है मम्मा,
13: अच्छा
4: निकलता हूँ।

0: जब टेकन खेलना मैंने स्टार्ट की थी तब मैं कोई 7-8 साल का था और मेरे बिल्कुल घर के सामने हुआ करती थी शॉप गेम की। फ्रूट्स की दुकान थी ना, मतलब बाहर उसके फलों की दुकान थी और फलों की दुकान के अंदर जाके गेमें थी, और गेमों में लाइन से कुछ 3-4 गेमें लगाई थी। पहले भी टेकन थी, फिर दूसरे में दूसरी मिशन गेम्स होती हैं जो बच्चे खेला करते हैं, इस तरह करके एक शॉप थी। तो अपने कज़न्स के साथ स्कूल से वापसी में जाया करता था गेम खेलने।
1: छोटा सा था तो वीडियो गेम में चले जाना, शुरू से इसको शौक था गेमिंग का ना।
0: लोग कहते थे कि अरसलान ना एक बच्चा आता है सबको हराता है, इस तरह करके थोड़ी एक इज्जत थी मेरी। वहाँ पे मुझे कोई नहीं हरा पाता था, मतलब वहाँ पे अगर 10 लोग आते थे रोज़ खेलने के लिए मेरी एज ग्रुप या मेरे से बड़े, तो मैं उनको ईजिली हरा लिया करता था। तो थोड़ा फेम मुझे मिलना स्टार्ट हो गया।
2: In the dim, smoky arcades, Arslan

0: Ash began making a name for himself. But in Pakistan, gaming was still seen as a useless distraction, and arcades were thought of as bad places.
1: Even ke mujhe bahut maar bhi pada karti thi, mujhe bhi yaad hai ke jo mere ek bhaiyon mein se ek bhai the, to wo mujhe bahut mara karte the. Unke ek dafa to arcade center ke andar jaakar mujhe bahut maar padi. और मैं भागने की कोशिश कर रहा था कि मैं चला जाऊं कि मेरी बिस्ती हो रही है वहां पे, जो लोग मेरी इज्जत करते थे वो कल को मैं अगर गया तो मेरी बिस्ती करेंगे वो, लेकिन उन्होंने वहां पर जाके मारा. तो उसके बाद मुझे एक दो दिन में गया भी नहीं कि लोग क्या सोचेंगे. फिर मैं फिर बेशरम था, मैं जाना भी था, मैं चला. लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल चीज़ हो गई. लेकिन फिर दोबारा दो तीन दफ़ा इस तरह हुआ, मार पड़ी बहुत ज़्यादा अब्बू से भाइयों से. तो
2: मैं जाके ले आती थी, वो रहती थी, मैं इसको मारी ना पड़ जाए तो मैं ना इसके पापा के से पहले इसको घर ले आओ.
3: अरसलान ने भी काफ़ी मतलब कि मार खाई है सबने. मुझे जब घर से निकाल देते थे तो मैं अरसलान की तरफ आता था.
4: हम छुप छुप के खेलते थे, हमें मार भी पड़ी है काफ़ी. हमने एक दूसरे से मिलना है, गेमिंग में जाना है, तो छुप छुप के जाते थे कि तुम्हारे घर वालों ने कहा है हमारे बच्चे से ना मिले, ये उसे गेमिंग में लेके जाते हैं.
3: निकाल देते थे हमें घर वाले, उनके पास आखिरी हल यही होता था कि इनको निकाल दें, तो हम खुश हो जाते थे. ठीक है निकाल दिया, अब सारा दिन गेम खेलेंगे.
1: आई थिंक उनको गेमिंग पसंद नहीं थी क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था वहाँ पे. वहाँ पर जिस तरह कि मैंने बताया कि वहाँ पर लोग अच्छे नहीं आया करते थे, बहुत बुरे लोग आया करते थे. अब तो ऐसे ही नहीं है, अब तो अच्छे बन चुके हैं क्लब्स, लेकिन तब लोग बहुत बुरे होते थे वहाँ.
0: अरसलान's obsession with gaming was hard for his family to accept. For many Pakistani parents, gaming as a career was unimaginable, and the pressure to follow a traditional path was heavy on him. But Arsalan held on to his dream, proving that with passion and hard work, even the wildest dreams can come true.
5: Unbelievable! Absolutely unbelievable!
6: Arsalan Ash is the real deal. That dude is the real deal.

0: यार टूर्नामेंट का सीन है कि सबसे जो पहली स्टेज है वो है कि आपने अपना ग्रुपिंग करना है आपका। मैं लास्ट 2 बार गया हूँ तो 4 ग्रुप होते हैं ए बी सी डी, तो मैं हमेशा ए में आ गया हूँ। मतलब ए
1: अच्छा
0: बहुत मतलब मुश्किल का है, बहुत अंत की है मेरे लिए, तो मैं बी सी डी में से कोई सेलेक्ट करूंगा। ए में लग सकता है इजी भी हुआ मेरे लिए, बहुत इजी भी हुआ, फिर भी ए में नहीं जाना। पहला तो मैंने इसलिए चला गया, मैं ए फॉर इस्लाम ए में, तो नी पीछे से आ गया कितना इस्लाम भी उलसान भी आ गया। मतलब सारे टॉप के प्लेयर मेरे ही ग्रुप पे आ गए इस साल, मैंने कहा नहीं। मैंने फिर लास्ट टाइम वो लकी ड्रा हुआ था, लकी ड्रा में मेरा ए आ गया। इस बार मेरी फर्स्ट रैंकिंग है, तो अब मैं खुद चेक कर सकता हूँ कि मैं किस ग्रुप में जाना चाहता हूँ।
2: Arslan Ash's journey was born from hardship. At a young age, he suffered the heartbreaking loss of his father, leaving his mother to raise him and his siblings alone.
3: इसके पापा तो रेलवे में थे, पेंशन ही आनी, उसमें क्या होता है कुछ। मैंने फिर घर में मेहनत करनी, सिलाई वगैरह करती।
4: तो मैं तो नहीं कमाता था, मैं तो था भी 12 साल का, और हम क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो तब वसाइल भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था घर में भी।
2: But from this struggle came an unexpected blessing. The dim glow of arcade screens became his escape. And in the game's pixels, he found a world where he was in control.
4: तो मेरे लिए हुआ कि मेरे लिए थोड़ा सा रास्ता खुल गया कि मैं ज़्यादा गेम खेलने लग पड़ा, ज़्यादा बाहर जाने लग पड़ा, ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ा। रात को टेंशन होती थी, हाँ 5 मिनट के लिए जाना है तो 5 मिनट के लिए, पहले 5 मिनट बाद ही घर आना, अब तो 5 मिनट के लिए घंटे बाद घर आना, तो मसला नहीं है।
3: पहले इसके पापा तो इधर दूर नहीं जाता था, ज़्यादा करीब करीब ही रहना, इससे मैंने जाके लिया था, तो बस फिर बच्चे सवाद हो जाते कहते कि अब कौन रोकने वाला, तो चुप करके निकल जाना। ये फिर इसकी त्वचा ही बहुत थी कि मैंने ये भी खेलनी है, मम्मा जो मर्जी कर लें, तो मैंने ये नहीं छोड़ी।
4: उस दिन उनको बहुत दुख हुआ था जिस दिन मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं है, और एक बंदा आप पे सारा कुछ लगा रहा है, सारा रात सलाइयाँ करके सब कुछ करके कि बंदा पढ़ ले और कुछ बन जाए अपनी लाइफ के अंदर।
3: मैंने कहा कल मामा मैंने ये करना, मैं

0: पढ़ लो, तुम अच्छी तरह पढ़ लो, कुछ बात दो।
1: तब मैं दिल दिल में सोचा था कि मैं इतना पैसा कमाऊँगा इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि मैं प्राउड फील कराऊँगा मम्मा को, लेकिन वो कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं किस तरह यकीन, मतलब आप तसल्ली दे सकते हो लेकिन जब तक आप करो ना तो यकीन नहीं आता।

0: day one of the Tekken World Tour Finals 2023. And what better place than the legendary Civic Theater? This historic venue sets the stage for an unforgettable showdown, where only one will emerge as the new champion.
1: First Tekken World Tour Finals on American soil. It is about to be amazing, and I hope you guys are ready for some good-ass Tekken. And if you've ever watched the TWT Finals, you know historically the LCQ is where the fire starts.
2: The C word to me is violence. This is, we are about to witness some beautiful chaos, you know what I'm saying?
0: As the last chance qualifiers begin, Arslan Ash steps in, still feeling the sting of last night's defeat. The last chance qualifiers offer players one final chance to grab the two remaining spots in the Tekken World Tour Finals. With top global and regional players already locked in, this is the last opportunity for competitors to fight for Tekken glory. Who will rise to the occasion? The crowd's energy is electric. Every match ignites excitement.
3: KO.
4: We always say it's a bloodbath, but this time, this is the last one ever for Tekken 7.
3: Oh, yeah.
4: There are so many killers.
0: In a surprising turn, Joe Crush, the opponent from the night before, wins the final match of the LCQ.
5: But oh my goodness, your LCQ champion, Paragon Joe Crush.
6: Congratulations to Joe Crush on another awesome victory.
0: The crowd cheers as Joe's victory cements his rapid rise, while Arslan watches closely.
7: I don't know if it was like destined to, you know, like I just was winning. Like yesterday we played a practice tournament against Arslan. My first hard match was against Arslan and I, you know, won that. So I was like, wait, what's going on here? You know what I'm saying? Like, so, man, it's just, it feels crazy. Something's in the air, you know?
8: We thank you guys for staying up with us, watching from wherever in the world you're watching from. But we'll see you guys in the morning. Look forward to the violence and the chaos that is going to go down in these group stages. And we'll catch you guys tomorrow. Everybody be easy.
9: Yeah, Joe Crush qualified today. LCQ was in that. टेंशन नहीं है मुझे लेकिन उस वो यंग प्लेयर है और काफ़ी अच्छा खेलता है उसने हराया था लेकिन मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे पूल में वो आया तो मैं उसे हरा सकता हूँ लेकिन फिर भी थ्रेट तो है वो और मैं चाहूँगा कि मेरे पूल में वो ना आए क्योंकि मैंने बाकी सबके खिलाफ तो तैयारी की हुई है बहुत अच्छी तो देखते हैं बट कंग्रेचुलेशन टू जो क्रिश फॉर क्वालिफाइंग
0: Arslan Ash was always a risk taker, constantly searching for new challenges. He dared to dream beyond his city's borders. While others saw gaming as a dead end, Arslan saw it as a way to greatness. Even when no one believed in him, he believed in himself.
9: मुझे याद है एक दफा फिर ना मैं इमरान बैठे गेमो सेंटर के बाहर तो मैं इमरान से कह रहा हूँ कि यार इमरान मुझे लगता है कि ना मैं यहाँ के लिए बनाई नहीं हूँ मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए बनाई नहीं हूँ यहाँ का लेवल और मेरे लेवल में बहुत फ़र्क है मैंने बाहर जाना है और मैं ना बाहर जाऊंगा और मैं जीतूंगा
10: पर तब हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे होते कि कोई अपनी टिकट खरीद के दुबई भी चला जाए
11: तो मैं इसकी बात पे यकीन नहीं किया लेकिन मैंने कहा शायद इसने अहम ही बात कर दी है लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके पास तो पैसे नहीं है ये कैसे जाएगा
0: He knew greatness wasn't defined by where you start. It's about how far you're willing to go.
9: हम जिस सेंटर में खेला करते थे उस सेंटर वाले आदमी से मैंने कहा कि ना मेरे पास तो पैसे नहीं है मैंने बाहर जाना है और तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो भी आता है मैं हराता हूँ मैं जीतता हूँ तू मेरे पे पैसा लगाओ कहता मेरे पास तो पैसा नहीं है मैं कुछ करूँ कहा चलो मैं तुम्हारा पासपोर्ट बना देता हूँ तो 5,000 रुपया उसने लगाया मेरा पासपोर्ट बनवाया मैं उसके साथ ही गया उसने पासपोर्ट बनवा के दिया फिर एक बंदा था दानी भाई उससे मैंने कहा कि दानी भाई जीतेंगे तो आधे पैसे आपके आधे पैसे मेरे मुझे बाहर भेजो जैसे करके कहता कि 20,000 की स्टिक मंगवा के दी आर्केड स्टिक जिससे आप बाहर प्रोफेशनली खेल सकते हो तो पाकिस्तान में वाहिद बंदा था पहला वाहिद बंदा था जिसके पास स्टिक थी
0: It wasn't just a joystick. It was Arslan's magic wand, through which he cast his gaming skills for the world to see.
9: टिकट मेरी दानी भाई नहीं कराई थी खर्चा वगैरह घर वालों ने दिया मुझे तो पहला टूर्नामेंट मैं गया ओमान में खेल पहली दफ़ा ट्रैवल करा था जहाज में बैठा, काफ़ी घबराया भी जब बोल रहा नीचे आ रहा है पहले पहले दफ़ा। और ओमान में फिर मैं रुका, जो दानी बे के दोस्त थे कुछ, जहाँ पे आप देखा होगा बाहर जाते हो फैक्ट्री के लोग बैठे होते हैं, उन्होंने हॉस्टल बुक किया होता कमरा, वहाँ पे बैठे होते हैं साइडों पे, वहाँ पे मैं ठहरा, टूर्नामेंट खेलने गया, वहाँ पे मैं जीत गया।
0: Arslan's first win came easily. The competition in Oman wasn't tough, and the prize was only a modest gaming console. But within that small victory, Arslan saw something much bigger. FVC Major 2018 in Malaysia, a tournament where he'd face legendary Korean and Japanese players he'd only admired from afar. This wasn't just an opportunity. It was his moment to prove he could compete with the world's best.
9: मैं टूर्नामेंट पे गया, पहली दफ़ा कोरियंस को देखा, जापानीज़ को देखा, उल्सान को देखा, सबको मैं हरा रहा था। तो वहाँ पे जिंडिंग कोरियन टॉप प्लेयर है, वो आया, मैं इससे कहा, मैं कहा मैं खेलो FT ना, FT खेला तो उल्टे सीधे करैक्टर ले रहा, मतलब इन्जॉय कर रहा है कि हारा जीत रहा कोई मसला नहीं है।
0: In Tekken, FT stands for first to 10, meaning the winner is the first to win 10 rounds to claim the match.
9: मैंने किसी को कहा यार ये लोग सीरियस नहीं खेलते, कहते नहीं टूर्नामेंट में सीरियस खेलते हैं। मैं कहा पता नहीं टूर्नामेंट में मिलता है कि नहीं मिलता है ये मुझे, मैंने इसको हराना है सीरियस करेक्टर लेके। तो उसने एडी लिया, एडी का प्लेयर था, उससे मैंने बहुत बुरा मारा, वो लोग परेशान हो गए कि जंडिंग ने एडी लेके हार गया। कहते वे आर यू फ्रॉम, मैं कहा पाकिस्तान। तो मैं पे गूगल पर सर्च करना पड़ा पाकिस्तान है कहाँ पे, मतलब सुना है पाकिस्तान में भी गेम खेलते हैं।
0: फॉर द फर्स्ट टाइम द टेकन वर्ल्ड हर्ड द नेम पाकिस्तान, and it was Arslan Ash who made it happen.
9: Hello, haan bas uthi hu main, taiyari full hai, aur dua karna, mama se bhi kehna ki dua kare.
12: First and foremost, one of the greats, one of the goats, one of the best to ever do it. Please make some noise for Nee.
13: Boom! Group B is filled. Anakin, Rafe, Kokoma, and Al to fill.
12: Make some noise for Arslan Ash. The choices have been made, the groups have been filled, and you guys are about to see some good ass Tekken. And I know it's early, but make some noise!
0: Arslan Ash, ever the strategist, picked his pool wisely. No Nee or Atif Butt to face early on. The tension in the venue is intense as the round robin unfolds. Crowd's energy builds with each match. And Arslan knows his moment is approaching. But how did a young boy from Lahore learn to handle such pressure? To find that answer, we must turn back time. Malaysia, 2018.
9: अब मेरा मैच है, मैंने कहा इसको तो मैं हरा लूँगा, मैं स्टेज पे हूँ, उल्सान वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, वो अपनी LED पे, मैं अपनी LED पे बैठा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं टांगे मेरी शेक करने लग पड़े। मैंने कहा मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो इस बंदे को हरा लूँगा, पहले मेरी ऐसे ऐसे करके टांगे बहुत ज़्यादा तेज थे, इस कांपने लग पड़ी मेरी टांगे, और मैं नर्वस हो गया। मैंने कहा यार ये क्या फीलिंग है, क्यों, और वो रिलैक्स है, वही बंदा, वही गेम, एक दिन पहले उसको मैं जीतने नहीं दे रहा, बहुत ही मैं नर्वस था, उसने सेम गेम की, कोई प्लान चेंज नहीं था, लेकिन मैं हार गया। तो फिर पता लगा कि यार इंटरनेशनल स्टेज पर खेलना और किसी कोरियन या प्रो के खिलाफ खेलना, ये आपको एक्सपीरियंस से आता है। फिर मेरा मैच आ गया नोबी से, और नोबी के साथ भी सेम चीज़ हुआ, और फिर मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं उससे भी हार गया ना, इस तरह बहुत लास्ट राउंड पर, लास्ट पॉइंट पर हारा, तो मुझे पता लगा कि यार स्टेज की गेम और स्टेज का प्रेशर हैंडल करना और अपने आप को कंट्रोल करना, नर्व्स को कंट्रोल करना भी ये अलग गेम है। डजंट मैटर कि जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस करो, जितने मर्जी आप अच्छे हो, जब तक आप स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाते, उसका प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते, यू आर नथिंग।
0: Arslan Ash, known for learning from his mistakes, has overcome early challenges. Yet, the heat is on in New Orleans as Olsen dominates Group A, securing a top 8 spot in the finals. With Group B matches about to begin, all eyes turn to Arslan Ash to deliver. Arslan feels the weight of expectations. Every win counts, but the road ahead is long and tough.
4: Look at this Group B, man. We have the four-time EVIL champion, Arslan Ash, in this group. We have
8: to our next match, which is going to be a run back for the ages,
4: oh
8: MYK.
4: My goodness.
8: We gotta see, you know, if Al is gonna sit down and play against Arslan Ash, who's the player that he's worried about?
4: Let's find out.
14: So, 日本の予選でも... 一番そのトーナメントで意識してるプレイヤー、確実にやはり上位に上がってくるプレイヤーだったんで。
0: The bright lights shine down, and the crowd buzzes with excitement.
8: Pakistan, you already know, started playing with Tekken 6. Best memory of Tekken 7, becoming a double EVO champion. Best result in TWT 2023.
0: It was a high-stakes mirror match between Ao and Arslan Ash, both using Zafina and Kunimitsu, a character Arslan had owned into his secret weapon and good luck charm. Known for his mastery of female characters, choosing Kunimitsu seemed inevitable.
4: Crowd, all our favorite stuff from Tekken 7.
8: Ninja battle. At EVO, it just felt like, again, just momentum control completely in Arslan Ash's favor. A lot of really, really just compact play too.
4: Oh my goodness.
8: Wow.
0: The pressure was building, and Arslan could feel it in every breath. But with a final blow, he claimed a victory in the first match. The crowd erupted, but beneath the cheers, this moment carried a deeper meaning.
8: Arslan Ash, for so many players on this tour, especially so many of the qualified...
0: In a male-dominated society like Pakistan, where heroes are often men, Arslan Ash broke the mold.
15: अपने वक्त में बड़ा फेमस हो गया था कि वो लड़कियों से खेलता है और उसका इवन लड़कों ने नाम रख दिया था कि अरसलान बच्चियों वाला
9: लव्स इस्तेमाल होता था बच्चियां वाला तो ये जो फीमेल्स करैक्टर खेलते थे ना मेल्स नहीं खेलते थे ये उनके लिए इस्तेमाल होता था वो अजीब मेंटालिटी लोगों की थी तुम वो लोग बिस्ती फील करते थे क्या हम लड़कियों से हारे हैं
15: माशाल्लाह से पाकिस्तान में सबको अल्फा बनने की पड़ी रहती है तो यू नो अल्फा बॉयज हमेशा से मेल कैरेक्टर से खेलते हैं ठीक है तो वो ठीक है ना बॉयज को सूट भी करता है
9: और जो लड़कियों से खेलता था उस पे भी वो कहते थे तो बच्चे ना खेलने हैं मतलब समझ आ रही है आपको कि एक शेम होती थी क्योंकि और क्योंकि लोग उनसे खेलते नहीं थे लड़कियों से तो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं होती थी उनके खिलाफ मतलब एक चीज़ आप करोगे ही नहीं तो उसके खिलाफ प्रैक्टिस किस तरह करोगे आप तो ये वजह थी कि मैंने उनसे खेलता गया और फिर मैं पाकिस्तान में जीता भी उससे जूलिया से फिर नीना से लीली से
15: क्योंकि उसको पता था कि लड़कियां इस गेम के अंदर बहुत तेज हैं लड़कों की निस्बत
16: फिर उनके पास प्लस फ्रेम ज़्यादा होते हैं उनके पास डैमेज ज़्यादा होता है यानी कि उनको टेकन में मेल की निस्बत जो है ना एडवांटेज ज़्यादा होता है वो इसलिए इनसे खेलता है
17: आई फील दैट दैट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट इन हाउ ही perceives not just himself but you know the sort of environment that he was brought around his mother was really back there to support him and he really reveres that sort of empowerment that came from her
18: ha zafina ka maine bataya tha maine kaha is character se khelo to wo jaise wo jump karti na ghoomti hai to wo bada acha mujhe laga na dekh rahi thi main isko khelte main kaha nahi ab ye naya character aaya to isse khelo
19: zafina ka maine pucha tha aap kyun khelte hain uske sath तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मा ने कहा था ये आप इसके साथ खेलो ज़फीना के साथ
17: आई डोंट थिंक दैट यू नो लाइक यू कुड प्रोबब्ली एवर कम अप विद अ कैरेक्टर दैट्स फीमेल एंड अरसलान वुड नॉट ग्रेविटेट टुवर्ड्स
20: द

0: How could he take on the best? Desperate for one last chance, he pleaded with his first ever sponsor, V-Slash, who was now on the verge of pulling out, just to get a ticket, relying solely on promises and prayers. But how could he possibly defeat the greatest of all time?
1: पर मैंने ना हिम्मत इकट्ठी की कि नर्वस नहीं होना जो भी है हार जाऊंगा लेकिन मैं नर्वस नहीं होना तो मैं बाहर गया और मैं जाके ना काइंड ऑफ मेडिटेशन कह लो या कुछ भी कह लो मैं आंखें बंद करके इस पर लाइक कि मैंने बस जो भी सोच रहा था कि अपनी ना एनर्जी कलेक्ट कर रहा था कि जितनी मैंने गेम आज तक खेली है जिंदगी के अंदर वो मैंने और अम्मी का भी सोच रहा था बहुत ज़्यादा कि वो प्रेशर था तब प्रेशर था मेरे पे बहुत ज़्यादा कि मैंने वो प्रेशर और जो सीए की जो फीस और सब कुछ मेरे जहन में आ रहा था कि मैंने वो सब चीज़ों को ना आज बदलना है मैंने उनको पे बैक करना है जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं दानी भाई जिसने वीज़ा की मदद की जिसने किसी भी तरह की मदद की मेरे और मैंने अपना नाम बनाना आज मेरे पास इसके बाद शायद मौका आए ना
0: But Arsalan defied fate. Against all odds, he stepped up and conquered the greatest. The underdog had risen. The impossible was now his reality. In the grand finals, Arsalan achieved the impossible. A fairy tale ending to an unimaginable journey.
2: 그 전에는 이제 좀 본 적이 없던 스타일이었어요. 왜냐면 공격과 방어의 밸런스가 너무 좋았기 때문에.
0: In one night, everything changed. The quiet underdog from Pakistan dethroned the undisputed king, catapulting himself into the spotlight.
1: Twitter खोला कुछ हजार followers हो गए. बड़ी जा रहे हैं, बड़े लोग follow कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक player आया है, पाकिस्तान का भी कोई नाम है. YouTube पे लोग मुझे कर रहे हैं. पहली दफ़ा मैं YouTube पे videos आने लग पड़ी. और मुझे पता नहीं famous लोग Markman जो अब Evo पे जिनका वो जो है director सारी कि किस नी को हराया है पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया पाकिस्तान से तो वो चीज़ को एडजस्ट करते करते 3-4 दिन लग गए मुझे फिर पाकिस्तान आया लोगों ने बड़ी वाह वाह की कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया ये वो तो अब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा तो मैं नी को हराया फिर इमरान की मुझे कॉल आई मुझे अभी भी याद है मैं एयरपोर्ट पर था तो कहता है इस्लाम तुम्हें याद है तुमने बात की थी पहले कि तुम हरा सकते हो नी को और मैंने कहा हाँ मैंने कहा था कहता भाई फिर तुमने आज ना पूरा किया और मैं उस वक्त वाकई रोया था उसकी बात सुन के कि हाँ मैंने एकदम ख्वाब देखा था एक कि मैं बाहर जाऊँगा और तुम्हें भी यकीन नहीं किया था मेरे में तो लेकिन कहता कि तुम्हें यकीन था अपने आप पे तुमने किया है काम
0: Now, with the stage set for the ultimate showdown, this is more than just a rivalry. It's destiny. Arsalan Ash isn't only chasing a win. He's chasing a dream only he dared to believe in.
3: Look at this. This is the original Tekken 4 PlayStation. Harada just signed it, one. And two, this is like the OG cases, bro. They're trying to get rid of physical media. So the fact that you have this, yeah. Is actually, this is like an instant collector's piece now.
4: और भाई टेंशन कम हुई
5: प्रेशर का बहुत टेंशन थी कसम से अब आगे जो भी होगा अच्छा होगा लेकिन चलो पूल तो क्लियर किया
0: As excitement and nerves soar, Arsalan waits to see who will move forward from Group C and D.
6: Is the next one.
7: But before we get there, we got a chance to talk to Atif about how he felt about his Tekken World Tour performance. Let's take a listen.
8: इस साल में जो काफ़ी ज़्यादा जो टूर्नामेंट खेल चुका हूँ मैं पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री में खेल चुका हूँ तो मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और
0: जो क्रश पुश रेनिंग चैंपियन आतिफ बट टू द ब्रिंक But आतिफ barely escaped defeat, keeping fans on edge. For the first time, in a long time. Atif looked vulnerable. Against all odds, Atif Bhatt, the reigning champion, failed to secure his place in the top eight. Atif Bhatt narrowly escapes defeat against Joe Crush. Atif Bhatt's loss to Lo Hai shocked the arena, but the real drama unfolded in a nail-biting tiebreaker. A match that would decide his future in the tournament. The atmosphere was tense, every move critical. Yet, in an unexpected twist, the strong contender fell short. Against all odds, Atif Bhatt failed to secure his place in the top eight.
1: To be very honest, I was happy too. I didn't say that I was sad, sad. A
6: pure gamer can never be someone's friend in the game. He will compete with him.
1: Because Wahid was a player who could harass me. If he was in the top eight, in the grand final, I was happy too. But as a friend, I was sad. So the feeling was mixed if I talk openly.
0: Meanwhile, Arsalan's fierce rival Ni made it to the top eight. Though from the loser's bracket. Adding even more tension to their heated rivalry.
9: Looked like he's gonna be in there for tomorrow.
1: Or Ni loser mein tha to isse achhi baat ho hi kya sakti hai. Wo to haar jata tha mere taraf se, main to dua hi kar raha tha ki Ni haar jaye. Aur main to chahta tha sabhi haar jaye. Ab main jeet jao.
0: Many dismissed Arsalan's early wins as luck, but he took their doubt as a challenge.
1: Kisne mere zehen mein baat dali thi ki tum Nee ko jitna marzi hara lo jab tak usse tum big stage pe nahi haraoge. Main kaha big stage kya hai? Kya hai big stage? Kisi tournament ke grand final mein, specifically Evo ke grand final mein tum usse haraoge tab tumhe log kahenge tum sabse strong player ho duniya ke andar.
0: For a Pakistani like Arsalan Ash, the biggest fight often happens off stage. Getting a visa. After endless struggles and near misses, he arrived in Japan just in time for his match. He fought through the loser's bracket, taking down top players. In the grand finals, he defeated Filipino Tekken legend AK, resetting the bracket and claiming victory. A win that shocked the world. One question remained. Could he prove the world wrong by defeating Ni? At EVO USA, Arsalan answered that question with unmatched skill. Defeating Ni to claim an unprecedented double victory. In a single year, he rewrote history, establishing himself as the undisputed king of Tekken.
1: Defeating Ni, of statement wo maine wahan pe apne liye create ki ke now I am the best in the world. Winning two Evos in a year, abhi tak kisi ne kiya nahi tha life mein.
0: His dominance silenced skeptics who had called his earlier successes a fluke.
10: People were still saying it was a fluke for some reason, but after the second time, maybe third time, I was just like, okay, there's a bit. Watch out for this guy.
11: So people calling it a fluke, that's just them not getting what they want from it. But me, I love to see how it develops and change up. So was it a fluke? I don't think so.
12: At first, I could see why people say maybe it's a fluke, because everyone loses. And you know, it was his first time being on the scene. So everyone expected, of course, Ni to win. But you know, once he's done it consistently, and not even just beating Ni, beating everyone else, it's like, it's not a fluke, and he's just really good. So that's just what it is.
1: Bahut tweets thi. I don't know how much tweet, lekin main trend kar raha tha us waqt pure USA ke andar, Pakistan ke andar bhi. Pakistan mein koi third number pe, USA ke andar pehle number pe main trend kar raha tha us waqt. USA is massive. To wahan pe trend karna is a huge thing. Aur Evo ki wajah se I was trending in USA. I was getting a lot of followers. Aur log duniya ke jahan se bhi hain tweets kar rahe hain. फैला रहे हैं इस चीज़ को जितना फैला सकते हैं. अब मैं ट्विटर से थोड़ा फेमिलियर होने पड़ा था तब तक. और फिर मैंने सजदा किया. वो ज़िंदगी में आज तक किसी ने नहीं किया था.
13: पेइंग रिस्पेक्ट, आई लव व्हाट आई एम सीइंग देयर. ब्यूटीफुल.
1: और वो वाली चीज़ बहुत वायरल गई, उस चीज़ों को लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर लोगों ने सर्च करने लग पड़े पाकिस्तान के बारे में, सर्च होने लग पड़ी इस्लाम के बारे में, सर्च होने लग पड़ी सजदा क्यों किया गया, अरसलान के बारे में सर्च होने लग पड़ी, स्टोरीज़ लिखी गई, आर्टिकल्स लगने लग पड़े, काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने कवर करना शुरू कर दिया। फैमिली तो बहुत ही हैप्पी थी, मम्मा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी, जो मुझे मेरी चीज़ बहुत हैप्पी कर रही थी उस वक्त, ये मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हैं कि मैं जीता हूँ, मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है। और सबसे अच्छी चीज़ तो इमोशनल भी है, काफ़ी इमोशनल है कि अभी हमने अपनी सिस्टर की शादी करनी थी, और इवन के मम्मा का जब इंटरव्यू करोगे वो भी आपको कहेंगी कि
13: ये जापान जब पहली दफ़ा जीता ना बड़ा टूर्नामेंट, तो उस वक्त वाकई हमें पैसों की भी ज़रूरत थी, ये बेटी की शादी भी थी तो ज़रूरत भी थी हमें, तो उस वक्त वाकई इतना इमोशनल हो गए थे कि हम रोने लगे। ये जब जीता है ना, सिर्फ मैं है एक दो पॉइंट से था कि ये जीत जाए, बस एक पॉइंट रह गया था कि या वो जीता या ये वो जीते, तो माशाल्लाह दुआ भी की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको कामयाब, यही वसीला है हमारा कि अल्लाह ताला इसको बना दे।
1: हमारे पास पैसे भी नहीं थे, और मैं जो 2 लाख था, 2 लाख से सोलह शादी होती है और लग भी चुका था 2 लाख, तो पैसे उसके बाद बहुत आम सी चीज़ें थी अंबर के पास, मतलब आम से ज्वेलरी, आम सा पर्स, आम से कपड़े, सारा कुछ आम सा। तो अब शादी किस तरह करना, तो शादी के लिए फिर उधार लेना पड़ना था, तो उधार दे कोई नहीं रहा था खानदान में,
13: तो बाहर कितने लोगों से पैसे मांगने के हमें मिले, लेकिन फिर मैंने कहा अल्लाह ताला ये जा रहा है ना तो इसको हमारा वसीला बना दो।
1: लोग जिनसे उधार लेने जा रहे थे कि कैसे उतारेंगे मम्मा उधार, बेटा भी कुछ नहीं करता इनका, और हम उधार दे दे तो फंस जाएंगे, तो कोई उधार देने को तैयार नहीं था।
13: तब ये जीते जब तो बस रोने लग गए थे कि खुशी से कि अल्लाह बेशक तो करीब हो के सुनता, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी शहर से करीब हो, तो वाकई से सुना। फिर हम रोने लग गए, तो जाके मैं सजदे में गिर गई थी कि अल्लाह ने इतना करीब हो के सुना, वो मेरा मुझसे पहली दफ़ा जब मेरा एक्सपीरियंस वाकई अल्लाह ने सुना था।
1: और यही चीज़ काफ़ी अच्छी हुई मेरे लिए और मम्मा के लिए और अंबर के लिए कि मैं कर सका, मैं जरिया बन सका अपनी इस बहन की शादी करने का।
0: Arslan Ash's journey is a story of heart, determination, and unstoppable willpower. From humble beginnings, he rose to become the undefeated champion of Tekken, breaking every limit. But now, the weight of the world rests on his shoulders. He's just one title away from securing his legacy as the greatest Tekken 7 player of all time, if he wins the TWT Finals.
14: Arslan, big day. What are your thoughts?
15: बस प्रेशर में रहने की कोशिश नहीं कर रहा ना, नॉर्मल जितना रह सके उतना वो है कि उस तरह का अच्छी गेम, बाकी जो रहा वो मंजिल
16: देखते
15: हैं। मैडी हाँ मैं खुद तो रेडी हूँ, नींद पूरी क्या थी मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है कि आपकी नींद पूरी है तो वो तो पूरी है।
17: कल परफॉर्म तो अच्छा किया, काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, अभी आज का मैं लोहा इससे वो काफ़ी अच्छा किया तो वो है, उसके बाद उल्सा सारे कोरियन ही आए हैं, 6 तो कोरियन है, एक जापानीज है, उसके एक पाकिस्तानी, देखते हैं क्या होता है।
14: पाकिस्तानी है बापियो खाली इस बार,
17: हमेशा ऐसे होता है एक पाकिस्तानी होता है लेकिन वो जीत जाता
1: है। एक रात पहले मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि नी ने मुझे एक दफ़ा एडवाइस की थी, मैंने पूछा कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है प्लेयर से खेलने से पहले, वो कहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि मैं प्लेयर की गेम वॉच नहीं करता, उनका स्टाइल नहीं देखता, मैं बस करैक्टर को देखता हूँ उनके। मैंने पूछा ऐसा क्यों है, कहता है क्योंकि जब लोग गेम इन रियल टाइम अपनी गेम चेंज कर लेते हैं तो आप सोच के कुछ हो जाते, होता कुछ हो रहा है, तो मुझे नी की बात काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैंने लैब नहीं करना, प्लेयर्स को देखना नहीं है, मैं करैक्टर्स को लैब कर लूँगा, अगले दिन मेरा मैच हो रहा है लोहाई से, लोहाई के करैक्टर्स देख लेता हूँ, उनके करैक्टर्स के मूव्स रिमाइंड कर लेता हूँ हर चीज़, लेकिन हाँ मैं स्पेसिफिकली लोहाई को स्टडी नहीं करूँगा, शाह उस्ताद उन्हें गेम प्ले ही चेंज कर ले सारी की सारी।
14: भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है?
18: ये हैंड वॉल, ये आप ठंडे हाथों से गेम नहीं खेल सकते, लाइक अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो आप कंफर्टेबली रहते हो, आपसे दुबते नहीं हैं बेटा, तो हाथ का वार्म होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मत ही रहने की गुलता में होगी।
16: Hi, this is Arslan Ash. I want to say thanks to Tekken 7. This game gave me everything, respect, money, fame. It means a lot to me. And I just want to say thanks again. I'm here because of Tekken 7.
19: To be honest, I want Arslan to take it. But Lohai has also been playing out of his mind. So it's between them two. And they're playing in the second match. So I don't know, man. I don't know.
0: The crowd buzzes with electric energy as Arslan Ash faces Lohai in a high-stakes battle. The tension is thick, and every move matters.
20: One of these two players will meet him there later on today, but which one will it be? Deal with this? Come from behind?
21: Oh, that is game number one for Lohai.
0: Lohai takes the first round, leaving everyone on the edge of their seats.
1: बहुत टफ चला गया था लोहाई वाला मैच पूरा का पूरा टॉप 80 इतना टफ था पर लोहाई का मैच पहला राउंड वो जीत गया तो आतिफ ने मुझे कहा था कि तुम ये ना लो नॉकटिस मैं नॉकटिस खेल रहा था और मैंने खुद भी कहा था मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ना लूँ मैं कुनिमिट से ले लेता हूँ क्योंकि मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा तो आतिफ वाज लाइक हाँ तुम उसके साथ खेलो कुनिमिट से और उसकी गलतियाँ देखो
0: In the second round, Arslan counters with precise attacks, breaking Lohai's defense. The crowd erupts as he claims the round.
11: Arslan looking good in that last game, and knee comes up over
20: the
11: stage.
20: Oh my God!
11: Oh, I almost spit my water out, bro. You can't.
0: Knee, coaching Lohai from the sidelines, knows that defeating Arslan will clear his own path to the throne.
11: I did not. Oh my God, this is crazy, bro. Do y'all not understand? This is crazy.
0: Arslan lands a perfect combo, sealing the victory in a thrilling finish. The tension isn't just in the arena, it pulses through Lahore, where every move grips the hearts of fans.
1: 4 days baad ki flight hai. To karna dua karna.
22: Baar kiske saath khelogi aap?
1: Abhi Kunimitsu aur Nokris aur Zafina. नहीं ज़फ़ीना का काफ़ी लोगों को पता लग गया लेकिन मैं नॉकटिस
22: और बताया इतना वीक भी होगी अब ज़फ़ीना
1: हाँ लड़की है पता है आपको तो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाकी आपको कहाँ साथ है और देखते हैं आप
22: मानो
1: भी वैसे तो जीतना तो मानो ने जिताना मानो मानो आपने जिताना ठीक यही जिताएगी मेटे का
0: Women have always played key roles in Arslan's life, from his mother to the iconic female Tekken characters. Now, Arslan welcomes two more important women, his wife and newborn daughter. Could they be his lucky charm?
1: Yes, I absolutely believe it, because I had two wives before marriage. And before marriage, I had a lot of strange things to hear, which I absolutely believe in. I think the world is so you should listen to every person's story. Some people believe that शादी के बाद में आप उस तरह से नहीं खेल पाएंगे इवन एक करेक्टर है गायल तो वो जब जीतता है ना वो बोलता है कि तुम जाओ और शादी कर लो मतलब गो एंड हैव बेबीज इस तरह करके बोलता है जब शादी कर ली जिम्मेदारियां आ गई बेबी आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते अब आप गए अब शादी वाले अब पेरेंट बन चुके हो घर बैठो आप बच्चे पालो जाके अब तुम तो चैम्पियन तो कहीं कभी नहीं बनने वाले लेकिन आप अभी देखें रिसेंट वर्ल्ड के अंदर आप लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं मेसी रोनाल्डो क्योंकि बच्चे हैं लेकिन स्टिल दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड तो ऐसा कुछ नहीं है ये स्टिग्मा है बिल्कुल कि ऐसा अगर हो गया शादी हो गई तो आप जीत नहीं सकते लेकिन मैं शादी के बाद 2 चैम्पियनशिप भी वो फिर जीता और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी और बेटी रहमत होती है तो मेरी बेटी काफ़ी मुबारक रहेगी
0: Arslan Ash challenges outdated beliefs. While the drama escalates as Ni enters the harsh loser's bracket to face Rangchu.
20: There you go.
21: But what if you like the legend himself, the Brian player himself? Make some noise if you would like Ni to take the set.
20: All right, here we go. Already blocking. Big one.
21: Oh,
20: staying alive to fight another round.
2: Is this the shift that he needed? Is this the momentum that he needed?